0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रुसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24,000 से 25,000 रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12,000 से 15,000 रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा।

सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कैच द रेन मत। एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से

0: अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
2: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
3: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए से लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भग

0: तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
2: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव, तीन शानदार ढंग से सजाया गया रथ, नंदीघोष, ताड़ध्वज और देव विदालन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रैंड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
3: सज रहा है रथ प्रभु का चंद्रमासा चेहरा।
4: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि सम्पन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
5: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा आईआईटी के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
6: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2

0: एक से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
1: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत, सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात मुक्त को हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ है महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथ पुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जीन से ग्रीन क्रांति, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी, ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज, टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपका मनमीत आरजे उम्मीद और आपने ट्यून इन किया है 107.1 FM रेनबो मस्त मुंबई। इस कार्यक्रम में आज के सितारे इस सेगमेंट में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और पता है ना आरजे उम्मीद क्या कहता है, बिखरने के लाखों बहाने मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढे। तो आइए, अगर ये अवसर हमने ढूंढा है तो उसे हम सेलिब्रेट करेंगे इस गाने के साथ। एंड आई जस्ट वांट टू से गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग मुंबई। मस्त मुंबई में आप सभी का स्वागत है। बने रहना मेरे साथ ठीक 11 बजे तक।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: कैसे होता है ना, बस हमने शो शुरू कर दिया और लोगों की तादाद व्हाट्सएप पे कुछ इस कदर भीड़ की तरह उमड़ पड़ती है कि भाई किस किस के मैसेजेस पढूं। अच्छा, आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं है? अरे यार, तो नोट डाउन कर लीजिए ना और लाइफ टाइम सेव करके रखिए, क्योंकि 24/7 अगर हम आपको एंटरटेन करते हैं तो आप हमसे जुड़े रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा ना। गानों के साथ कुछ बातें होंगी और आज मस्त मुंबई में आज के सितारे सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जो खिलाड़ी जब भी ग्राउंड पर खड़ा होता था तो हर किसी को लगता था कि यार ये बंदा कुछ कमाल कर दिखाएगा। पता है वो कौन है? 1990 से 2004 के बीच भारतीय हॉकी का शानदार प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया वो हॉकी

इस खेल से जुड़े हुए बहुत ही जाने माने खिलाड़ी। बताइए उनका नाम हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 8657661071 इस व्हाट्सएप नंबर पे आपके जवाब का मैं कर रहा हूं इंतजार। सुनिए तब तक ये गीत।

क्या बात है यार, क्या लिखी है ये बात जावेद अख्तर साहब ने। हृदयनाथ मंगेशकर का म्यूजिक, किशोर कुमार की आवाज और फिल्म मशाल से ये गीत था जो आपके कानों पर गूंज रहा था। आपको बताए, ये जो सवाल मैंने पूछा था कि कौन है वो खिलाड़ी, तो कई सारे लोगों ने जवाब दिया है और वो सही जवाब है। और इसमें सबसे पहले जवाब देने वाले हमारे एक ऐसे श्रोता है जो अपना नाम बताते हैं उमेश पार्शिटिव, और जवाब है धनराज पिल्ले। जी हाँ, एकदम सही। और इसी जवाब के साथ कुछ और नाम सही जवाब देने वालों में जुड़ गए हैं। उनमें एक नाम है अजित पवार नासिक से, श्रेय राउत, मिलेश गजानन राउत और आर्य मिलेश राउत टिघरेपाड़ा से। साथ ही हमारे संग जुड़ने वाले लोगों में कुछ सही जवाब देने वाले लोग हैं, दत्तात्रेय आदत वेलापुर से, फिरोज सिगानपुरिया जी आपका जवाब गलत हो चुका है, और मंगला पाठारी जी है, और ये अंधेरी वेस्ट से हमें मैसेज करती हैं, प्रदीप अनंत कृष्णन भी जुड़ चुके हैं। और सही जवाब देने वाले में एक और नाम जुड़ा है देवेन सुनावने थाने से, स्टार हॉकी प्लेयर मिस्टर धनराज पिल्ले की बात आज आप सभी से मैं करने वाला हूँ। दीपा पलकर जी भी सही जवाब देकर हमारे साथ जुड़ी है। चलिए, शुभदा जी, दीपा जी, देवेन सुनावने, प्रदीप अनंत कृष्णन, मंगला पाठारे, फिरोज सिगानपुरिया, दत्तात्रेय आदत, आर्यन सोमवंशी और अजित पवार, साथी उमेश जी, पंकज मोहोड़ जी, श्रेय राउत, गणेश पाटिल, विश्वास चांदोरकर, रजनीकांत पाटिल, विजेंद्र घटोल अकोला से, ममता महेश भाटकर, शुभांगी गायकवाड़, अंजू जी हैं अंधेरी से, सूर्यकांत कुम्भार हैं, प्राजक्ता दामले रत्नागिरी से हमें मैसेज करती हैं, दिलीप पाटिल, हितेंद्र दास, आप सभी का मैं आरजे अमित तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। प्रमोद चिंचलकर और प्रमोद कारखानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए एक और गाना सुनते हैं और उसके बाद जान लेते हैं कि किस तरह एक झगड़े में हाथापाई हो गई और उसी का नतीजा रहा कि एक भारतीय हॉकी टीम को मिला एक जबरदस्त खिलाड़ी। ये कहानी क्या है, सुनना चाहते हो? सुनाऊंगा जरूर। उससे पहले ये गीत सुनिए।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: हॉकी फील्ड बताया, हॉकी ये भारत का राष्ट्रीय खेल है और धनराज पिल्ले ने जब 1990 से 2004 के बीच भारतीय हॉकी का शानदार प्रतिनिधित्व किया था, तब एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर विश्व के सबसे प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी बनने तक उनकी कहानी जो रही वो प्रेरणादायक रही, आज भी कई लोगों को इंस्पायर करती है। और पता है, अन्य खिलाड़ियों की तुलना में मैदान पर और मैदान के बाहर भी धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व का अध्ययन उस दौर के भारतीय

खेल परिदृश्य की बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। हुआ कुछ यूं कि गणपति उत्सव था और धनराज एक स्थानीय झगड़े में हाथापाई में शामिल हो गए। अब उन्हें लगा कि पुलिस मेरी तलाश कर रही होगी। तो उस समय उनके भाई मुंबई में काम करते थे और वो चाहते थे कि वहां वो न रहें। रमेश ने तुरंत अपने भाई धनराज को अपने यहां बुला लिया और धनराज भी डर के मारे खुशी खुशी मान गए। तो उनके भाई जो रहे रमेश जी, वो एक हॉकी क्लब के लिए वहां पे खेला करते थे। उनकी टीम में एक खिलाड़ी की कमी थी, इसलिए धनराज का नाम सब्स्टिट्यूट के तौर पर शामिल कर दिया गया और उन्हें तुरंत ही पहचान मिली। जल्द ही कोच जोआकिम कारवालो की बदौलत वो एक कंपनी के लिए खेलने लगे और जूनियर असिस्टेंट के रूप में टीम में शामिल हो गए। इस कदर शुरू हुआ उनका हॉकी का सफर। और फिर आगे क्या हुआ, कैसे दिन बहार के आ गए, जल्दी मैं बताऊंगा। बने रहना आपका मनमीत आरजे अमित के संग 107.1 एफएम रेनबो पर। मस्त मुंबई आज के सितारे में आप सुन रहे हैं धनराज पिल्ले की कहानी आरजे अमित की जुबानी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।

कुछ नए नाम हमारे से जुड़ चुके हैं। विजेंद्र कटोल अकोला से, दीपाली शिरोडकर हैं, दादर से बाबा है, पंकज मोहड़ हैं, प्रणव शिंदे जी जुड़े हैं और प्रमोद कारखाने, शुभदा जी, सभी का मैं आरजे अमित तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप भी शायद मुंबई में ट्रैवल कर रहे हो या ऑफिस में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे जहां कहीं भी हो भैया, और अगर आपने ट्यून इन किया है 107.1 एफएम रेनबो, तो मैं आरजे अमित आपका तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। मस्त मुंबई ये शो हम लेकर आते हैं ना, तो इस शो में हम चाहते हैं कि जितने सारे मुंबई का ऐसा है, जितने सारे हमारे श्रोता है, हर कोई हमारे संग जुड़े। बट कैसे होता है ना, हम किसी को सुन रहे हैं ये हमें पता है, मगर उन्हें पता नहीं होता यानी मुझे पता नहीं होता, तो आप हमें भी इत्तला कर दीजिए कि हम आपके संग जुड़े हुए हैं। कैसे? 8657661071 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। आज कुछ

कह रहे ध्यानचंद जी का आपने जिक्र क्यों नहीं किया? इसका कारण एक है कि आज के सितारे इस कार्यक्रम में हमने बर्थडे बॉय धनराज पिल्लई को चुना है। आज उनका बर्थडे है, 1968 में उनका जन्म हुआ था, तो इसी बहाने आज हम उनके करियर पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि कैसे हाथापाई के बाद उन्हें हॉकी टीम में जगह मिली और 1987 तक उन्होंने राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना ली। उन्होंने मुंबई का शानदार प्रतिनिधित्व किया, राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती और 1989 में एशिया कप के संभावित खिलाड़ियों की सूची में उनका नाम शामिल किया गया। उसके बाद धनराज पिल्लई ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक और जबरदस्त रिकॉर्ड है, पता है क्या? एक खिलाड़ी के संग अगर उन्हें कंपेयर किया जाए जो कि क्रिकेट से जुड़ा है, तो कैसे दोनों के करियर के रिकॉर्ड्स हम सभी को चौंका देते हैं, जल्दी हम बताएंगे इस गाने के बाद। तब तक सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में गाया ये गीत अभिनेत्री फिल्म से।

मजरू सुल्तानपुरी की लिखावट में क्या जबरदस्त गाना बनाया है ना लक्ष्मी प्यारे ने। बस कुछ ही दिनों पहले प्यारेलाल जी की वाइफ गुजर गई। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में गाया ये गाना जब हम सुन रहे थे तो उनकी याद हमें आ गई। उनकी एक मुलाकात में उनकी प्यारी सी हंसी हमें भी बड़ी भा गई थी। आइए आज हम जिन पर बात कर रहे हैं वही सब्जेक्ट अगर आगे ले जाए तो मस्त मुंबई में आपको बताएं आज के सितारे में धनराज पिल्ले जी की ये ज़बरदस्त कहानी किस मोड़ पर हमें ले जाती है। देखो दोनों जो धनराज पिल्ले और सचिन तेंदुलकर का अगर हम जिक्र करें तो धनराज पिल्ले ने दिसंबर में चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था और महाराष्ट्र के एक और खिलाड़ी रहे सचिन तेंदुलकर, इनका पदार्पण हुआ था बस उन्हीं के एक महीने के बाद धनराज पिल्ले का जिक्र आया। दोनों ने अपने अपने खेल में भारतीय टीम के लिए सबसे लंबे करियर का रिकॉर्ड बनाया। सचिन ने 6 विश्व कप और 200 टेस्ट क्रिकेट मैच खेले जबकि धनराज पिल्ले ने 4 ओलंपिक खेले, विश्व कप खेले, चैंपियंस ट्रॉफी खेली और एशियाई खेलों में भी भाग लिया। रिक चार्ल्सवर्थ नामक एक खिलाड़ी कहते हैं कि पिछले 2 दशकों में भारत की जीत और हार के साथ धनराज का करियर गहराई से जुड़ रहा है। उनकी असफलताएं भारत की असफलताएं थी और उनकी जीतें भारत की जीतें थी। क्या जबरदस्त बात कही है ना। आइए इसी बात को आप सभी के साथ पहुंचाते पहुंचाते मुझे लगता है 9:25 हो चुके हैं। एक गाने के बाद कमर्शियल ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर मिलेंगे। बने रहना FM रेनबो पर आपका मनमीत RJ अमित के संग मस्त मुंबई में।

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मॉस रुपे और वीजा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

कितना मजा आता है ना जब कुछ कुछ लोग हमें दूर से मैसेज करते हैं, बोलते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और FM रेनबो पर हम कुछ इस तरह चिपके रहते हैं कि RJ अमित के संग बने रहना हमें अच्छा लगता है और गाने भी पसंद करते हैं, बातें भी पसंद करते हैं और उनका कहना है कि हम किसी और स्टेशन की ओर

करते ही नहीं है। चलो अच्छी बात है राजकुमार कुमार जी, जो बात आपने साझा की उसके लिए शुक्रिया। आज शंकर शिरोडकर भी डोंबिवली से हमारे संग जुड़े हुए हैं, प्रणव शिंदे जी तो हैं ही, दीपाली शिरोडकर जी भी हमारे संग जुड़ी हैं, और आज कुछ सदाबहार गीतों को एंजॉय करते वक्त स्नेहा जी वर्ली से और श्रीधर मुरस्कर जी, इनका भी साथ हम पा रहे हैं। कल्पना राजू वारे उल्लास नगर से हमारे संग जुड़ी हैं, एंड इवन स्वाति कुलकर्णी जी, इनका नाम भी जुड़ चुका है। सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हम एफएम रेनबो पर जिक्र करें तो जरूर 8657661071 इस व्हाट्सएप नंबर पे आपका मैसेज हम तक पहुंचाइए। आज पुणे के पास महाराष्ट्र के खड़की में एक तमिल परिवार में जन्मे बच्चे की हम कहानी आपको बयां कर रहे हैं। माता अंगलम्मा और पिता नागलिंगम घर चलाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। उनके पिता के पास गोला बारूद कारखाने थे और उस कारखाने में वे काम किया करते थे। चार बेटों में सबसे छोटे थे धनराज। उनके लिए जीवन काफी कठिन था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे नहीं थे ना। हालांकि सुग्रा विलासी सभा स्कूल के उनके शिक्षक ने उन्हें एक छात्र के रूप में याद करते हुए चुपचाप वे उनकी डांट सुना करते थे और कभी पलट कर उन्होंने जवाब नहीं दिया, रिस्पेक्ट किया करते थे ना टीचर का। खड़की में हॉकी की एक मजबूत स्थानीय परंपरा थी और बहुत जल्द ही युवा धनराज की टूटी हुई हॉकी स्टिक को बोरी की रस्सी से बांधकर और उन्हें गोंद से जोड़कर एक काम चलाऊ हॉकी स्टिक बनाया गया और वे खेलने लगे। उनके शैक्षणिक अंक वैसे कम थे लेकिन धनराज जन्मजात खिलाड़ी थे ना, तब बहुत कम लोगों को पता था कि वही धनराज एक दिन भारतीय जर्सी में हॉकी के मैदान पर तूफान की तरह विरोधियों को चीरते हुए निकलेंगे और कहेंगे

चलो सजना जहां तक घटा चले, ये बात लता जी की आवाज में कितनी मधुर लगती है। मजरू सुल्तानपुरी की लिखावट और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत मेरे हमदम मेरे दोस्त इस फिल्म से ये गीत था, जो कि आप सुन रहे थे एफएम रेनबो पर मस्त मुंबई। इस कार्यक्रम में आपका मनमित आरजे अमित के संग आज आप जुड़े हुए हैं और आज के सितारे में आज हम बात कर रहे हैं धनराज पिल्ले के बारे में। पता है भारत बनाम पाकिस्तान, जो उस दौरान विश्व चैंपियन भी रहा, एक बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाली थी और हॉकी मैच को देखने के लिए स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, जिसमें जोश से भरे स्थानीय दर्शक भी मौजूद थे। हजारों लोग बाहर इंतजार कर रहे थे, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें देखना था हिंदुस्तान के उस खिलाड़ी को जिसका नाम है धनराज पिल्ले। मगर धनराज ने उन्हें निराश नहीं किया, उस दिन उनका प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने सटीक पास देने, बेहतरीन टीमवर्क और अपने खास स्पीड और कौशल का प्रदर्शन करते हुए शानदार गोल भी दागे। चेन्नई की भीड़ ने उनका जोरदार उत्साह बढ़ाया और उन्होंने हैट्रिक बनाकर विश्व चैंपियन पाकिस्तान को हरा दिया था। अंतिम स्कोर था 5-2। यह किसी सपने जैसा था ना। धनराज का जन्म भले ही महाराष्ट्र में हुआ हो, लेकिन उस दिन वे एंगा वेट्टू पिल्ले बन गए थे, एक और सुपरस्टार जिसने भारतीयों और तमिलों को गौरवान्वित कर दिया था। ये बात आज भी कई लोगों को जरूर याद होगी। शैलेंद्र सिंह की आवाज में ये गीत सुनिए, मिलते हैं कुछ।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

9:45 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। आपका मन में दार जमीत आपको ठीक 10 बजे हिंदी में समाचार सुनाएगा और समाचार के उस पार आपको नमस्ते भारत की ओर ले जाएगा। फिलहाल डिफेंडर उनकी गति कौशल से डरते हुए हमेशा जो निशाना उन्हें बनाते थे, कोच का अपने खिलाड़ियों को आदेश रहता था विरोधी टीम के कि वो काले को पकड़ो। अब देखिए, ऐसा कहने पर किसी को गुस्सा आएगा, मगर धनराज पिल्ले बड़े खुश होते थे। यूं ही नहीं, उन्होंने अपने जुनून समर्पण के साथ भारत के लिए खेला, वैसा जुनून और समर्पण कोई और नहीं दिखा सकता है। इसलिए तो अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री और भारत गौरव, इन जैसे कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। आज के सितारे में धनराज पिल्ले को हमने ये मानवंदना दी। हम चाहते हैं 10 बजे के उस पार आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपको चौंका देगी। बने रहना FM रेनबो पर, आपका मनमीत।

न जाने क्यों ऐसा होता है, किसी के जाने के बाद मन लगता ही नहीं है, है ना। मगर मैं जा नहीं रहा हूँ, फिर लौटने वाला हूँ। 10 बजे आपको समाचार सुनाऊंगा और समाचार के उस पार नमस्ते भारत इस कार्यक्रम में ले जाऊंगा, जहाँ कहानियाँ सुनते हैं। इस सेगमेंट में मैं आपको कई और सदाबहार गीतों की ओर और कहानियों की ओर ले जाऊंगा। आज इस शो में हमारे से जुड़ने वाले कुछ और नाम, अर्जेंटीना विन के बाद गानों को भी एंजॉय कर रहा हूँ ऐसा राजू शिंदे जी कहते हैं। संयोगिता चौहान इंदौर से मैसेज करती हैं, गानों पर बेहद दिलहार बैठी हैं पंकज मोहर जी, दीपाली शिरोडकर, आदर्श कनौजिया, महेश भाटकर, दादर से बाबा श्रेय राउत, स्नेहा दीपा पालकर, प्रणव शिंदे और शंकर शिरोडकर, विजेंद्र घटोल अकोला से, कल्पना राजू उल्लासनगर से, प्रमोद चिंचोलकर, स्वाति कुलकर्णी फिरोज सिगानपुरिया, और साथ ही हमारे अन्य जो श्रोता है उसमें मंगला पाठारे, प्रमोद कारखाने, शुभदा जी और देविन सुनावने, प्रदीप अनंत कृष्णन, दत्तात्रेय आदत, आर्यन सोमवंशी, धनराज पिल्ले का शो पसंद आया ऐसा अजित पवार जी का कहना है, उमेश जी हैं, गणेश पाटिल वार्धवन, विश्वास चांदोरकर, रजनीकांत पाटिल, ममता महेश भाटकर, शुभांगी गायकवाड़, अंजू अंधेरी से, आप सभी का मैं आरजेमी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सेकेंड हाफ में भी आप हमारे संग बने रहेंगे और मैं आपसे प्यार मांग रहा हूँ, आपकी राय जरूर बताना प्रोग्राम कैसे लगा। FM रेनबो पर 8657661071 पर आपका मैसेज का मैं इंतजार कर रहा हूँ।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर अब तक के प्रमुख समाचार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू होने के पहले दिन कल भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात किया गया। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सचिव राकेश अग्रवाल ने कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह सबसे महत्वाकांक्षी और बड़े व्यापार समझौते में से एक है। इसे दोनों पक्षों के लिए बाजार पहुंच के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे। समाचार में आगे, रेल मंत्रालय ने रेल टिकट बुकिंग को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए IRCTC की वेबसाइट का एक नया वर्जन जारी किया है। IRCTC ने इस वर्जन में 4 बड़े सुधार किए हैं। पहला, इसमें फालतू कैप्चा, पॉपअप ऐप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। समाचारों में आगे, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। और समाचार के अंत में खबर है क्रिकेट से जुड़ी। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगहम के एस्बस्टन में पहले एक दिवसीय मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम नमस्ते भारत।

नमस्ते भारत में कहानियां सुनते हैं सेगमेंट में मैं आपका मनमीत आरजे अमित 107.1 एफएम रेनबो पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। नागिन फिल्म का ये गाना आपको किसी

तक बचा चुके हैं 7000 से भी ज्यादा जान। 2004 साल में एक दिन वो खेत में काम कर रहे थे, अचानक उन्हें एक सांप दिखाई दिया। घबराकर उन्होंने उसे डंडे से मार दिया। कुछ देर बाद जब उन्हें लगा कि सांप मर चुका है तो उन्होंने उसे उठाया और बाहर फेंकने लगे। तभी उन्हें लगा कि सांप अभी जिंदा है और तड़प रहा है। यही घटना उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन लेती है और फिर किस तरह वो बन जाते हैं सर्प मित्र, ये कहानी जल्द ही मैं आप सभी के संग बांटने वाला हूं। फिलहाल मुझे आप बताएं कि कभी ऐसा सांप आपको कहीं दिखाई दे तो आप भी इसी असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। हमें बताएं 8657661071 इस व्हाट्सएप नंबर पे आपकी कहानी।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharati.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

आज कई सारे हमारे श्रोता हमारे से जुड़े हुए हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है कि विश्व सर्प दिवस के उपलक्ष्य में हम एक सच बात आपसे साझा करना चाहते हैं। मैंने बोला क्या? वो कहते हैं कि भाई देखो, कई जगह अगर सांप दिखे तो लोग उसे मारने की कोशिश में ज्यादा जुट जाते हैं। हालांकि खेतों में अगर जाए तो किसान उनके नाद में नहीं लगते, उन्हें वो किसानों का मित्र कहलाता है तो उन्हें छोड़ देते हैं ताकि वो खुशामद कर सके। और खेत में किसी तरह जो बाकी प्राणी होते हैं उन्हें वो खा जाता है, यानी चूहे, यानी फसल का नुकसान नहीं करते हैं। तो सांप अगर कांटे तो क्या करे, ऐसा भी हमें पंकज जी ने एक सवाल पूछा है। और प्रशिक्षण या संरक्षण की क्या ज़रूरत है और पर्यावरणीय अहमियत का कैसा ख्याल रखा जाए, ऐसे कई सारे सवाल आज हम तक पहुँचे हैं। तो आज मैं रमेश जी की जो कहानी आप तक पहुंचाऊंगा ना, तो उसके जरिए आपको कई सारे आपके सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। अब देखो, बरसात का मौसम आते ही कई इलाकों में सांपों की फुफकार आम हो जाती है ना, नरम मिट्टी हो, घने पेड़ हो, और उसमें उसम भरे वातावरण में सांप अपने बीलों से निकलते हैं, खेतों या घरों तक, यहाँ तक कि स्कूलों या अस्पतालों तक भी पहुंच जाते हैं, डर के मारे लोग उन्हें मारते हैं। लेकिन रांची के रहने वाले रमेश कुमार महतो इस डर को खत्म करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। कैसे, बताएंगे इस गाने के बाद। सुनिए उदित नारायण की आवाज में गाया ये एक अनोखा गीत, साथ में लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल और फिल्म डर से ये गीत आप सभी के लिए। बने रहना एफएम रेनबो पर आपका मनमीत आरजे मेरे साथ।

कभी ऐसे हालात हुए हैं क्या आपने साहब को देखा, आप सुध-बुध खो बैठे और फिर हालात कुछ ऐसे बिगड़ गए कि क्या करे क्या न करे वो तो समझ में नहीं आया, मगर फिर भी हम इतने दीवाने बन जाते हैं कि ऐसे वक्त हम तुरंत डंडा उठा लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है। रमेश कहते हैं कि जब मैंने उस सांप को मारा और उसे देखने लगा, वो तड़प रहा था, तब मुझे पहली बार लगा कि मैंने किसी बेकसूर प्राणी की जान लेने की कोशिश की, और फिर मैंने तय कर लिया कि अब कभी भी किसी भी सांप को मैं नहीं मारूंगा। और इतना ही नहीं, लोगों को भी यही समझाऊंगा। अब वो वही तो काम कर रहे हैं, पिछले 20 सालों से सांपों को रेस्क्यू कर रहे हैं, सुरक्षित जंगलों में छोड़ने का काम कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 7,000 से भी ज्यादा सांपों को नई जिंदगी दी है, और पता है साथ ही वे सर्पदंश के शिकार लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाते हैं, और दर्जनों जाने उन्होंने आज तक बचाई हुई है। इसमें उनका मानना यह है कि सांपों से डर कर उन्हें मारना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझाना चाहिए कि डर ही सबसे ज्यादा जान लेता है, न कि जहर, है ना? वैसे बात अलग है, कुछ लोग अपने जबान से, अपने बर्ताव से जहर दे जाते हैं और फिर न कुछ याद रहता है न ही कुछ समझ में आता है। तब यही बात शायद आप भी कहते होंगे जो आनंद बख्शी ने लिखी है फिल्म नगीना के लिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और मोहम्मद अजीज की आवाज। सुनते रहना FM बिंदु पर आपका मनमित आरजे अमित के संग। नमस्ते भारत।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। आज हमारे श्रोताओं में कई श्रोता ये भी हैं जो कहते हैं कि गांव जाते हैं तो खेतीबाड़ी में सांप दिखाई देते हैं और हर किसी को डर तो लगता ही है सांपों से, है ना। मैं एक बार ऐसे साउथ गया था बैंगलोर में और वहाँ एक ऐसा इलाका था जहाँ एक नहीं बल्कि लगभग सैकड़ों सांप एक साथ मुझे दिखाई दिए थे। आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे। डर तो काफ़ी लगता है। मगर प्रणव शिंदे हमारे एक श्रोता है, वो कहते हैं कि प्रकृति का अनमोल रत्न है, धरती का श्रृंगार है ये, फसलों के रक्षक हैं सच्चे, पर्यावरण का आधार है ये, चंदन की खुशबू से महके भोलेनाथ के गले का हार है ये, बिना पैर के रेंगने वाले कुदरत के अद्भुत कलाकार है ये, परिस्थिति की तंत्र की कमान इनके दम से ही तो चलती है, सांपों को अगर बचाओगे तो धरती सुंदर सचती है। वाह, बहुत ही खूब लिखा है सर। देखिए, श्रोता भी न सिर्फ श्रोता बल्कि कवि बन जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि चेहरे पर सादगी या बातों में मिठास है, अमित जी आपकी आरजेगिरी सच में बहुत खास है, मुंबई की धड़कन सुनती है वो आपको चांद से, आपकी जादुई आवाज में एक अलग ही एहसास है। सर आपका ये अंदाज हमें भा गया, बहुत बहुत बढ़िया। बस हमें सुनकर अगर आपकी कला भी कागज पर उतर रही है तो ये खुशी की बात।

बात है। वैसे सब कुछ आज के जमाने में हमें याद रहता नहीं है, मोहम्मद अजीज साहब ने जिस तरह गीत के जरिए कहा, मगर आज 1993 में 16 जुलाई इस तारीख को एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हुई थी साहिबान। हम चाहते हैं इस सेगमेंट को सेलिब्रेट करते हुए साहिबान फिल्म का ये गाना हम आपको सुनाएं, अनुराधा पौडवाल और जॉली मुखर्जी ने गाया।

हमारे मेले में जब लोग आते हैं तो खो नहीं जाते, हमारे संग बने रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आर्ज अमित क्या कहता है कि बिखरने के लाखों बहाने मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढे। और ऐसे जुड़े हुए लोगों में एक और नाम हमारे संग जुड़ रहा है, पूजा धानोरकर। वो कहती है कि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में शेतफल नामक एक अनोखा गांव है जिसे स्नेक विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता है। शायद आपको इसके बारे में पता ना हो, इसलिए ये जानकारी वो साझा करना चाहती हैं कि इस गांव में लोग बिना किसी डर के जहरीले कोबरा सांपों के साथ अपने घरों में एक साथ रहते हैं। अरे यार, आपने विजुअलाइज किया कि वो कैसा होता होगा पल? जब यहां कोई नया घर बनाता है या फिर बनता है तो घर की छत या दीवारों में सांपों को रहने के लिए विशेष जगह बनाई जाती है। पता है उसे क्या कहते हैं? देवस्थानम। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के शेतफल में कभी ना कभी मुझे भी जाने का मन कर रहा है, ये देखने के लिए कि सच में वहां का नजारा कैसा होगा। आइए, वो रूप देखने के बाद शायद हमारा मन भी यह कह उठे कि रूप सुहाना लगता है। नमस्ते भारत में, आर जमित के संग बने रहना और सुनते रहना 107.1 FM रेनबो पर, कहानियां सुनती हैं सेगमेंट।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharti.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

10:46 हो चुके हैं और अब हम वाइंड अप की ओर जरूर बढ़ेंगे, मगर मुझे ऐसे लगता है ना कि जितने सारे सांप हैं, अलग अलग उनके टाइप होते हैं, कभी स्कूल, किसी घर में, किसी नाली में अजगर छुपा दिखाई देता है, या सुरक्षा तंत्र या किसी बिना सरकारी सहायता के जब लोग सर्प मित्र के रूप में पहुंच जाते हैं तो वे उन्हें पकड़ने के बाद कैसे सांपों को प्लास्टिक के डिब्बे या डिक्की में रखते हैं, घने जंगलों की ओर निकल पड़ते हैं, कच्चे रास्ते, पगडंडियां, उबड़ खाबड़ सड़कें पार करते हुए वे सुनिश्चित करते हैं कि सांप को वहां छोड़ा जाए जहां इंसानों की बस्ती ना हो और वो दोबारा प्राकृतिक जीवन जी सके। इसमें कभी इंडियन कोबरा, कभी कॉमन कैरेट, कभी बैंडेड कैरेट, कभी रसल वाइपर जिसे हम सियर चंदा कहते हैं, कभी बीट वाइपर होते हैं जिसे ग्रीन या वाइट लिप्ट या बैम्बू भी कहा जाता है, या फिर कुछ ऐसे जैसे धामिन, रेड सेंट बोआ, रेड स्नैक या फिर चेकर्ड किलबैक, इन जैसे फायदेमंद मगर ज़्यादा जहरीले न होने वाले सांप भी हमें दिखाई देते हैं। और खेतों में जब चूहे या कीट खाकर किसानों की ये मदद करते हैं तब ऐसे लगता है यार इन सभी से ज्यादा हम इंसान से तो नहीं डरते जो सांपों से ज्यादा अपनी जबान से जहर फेंकते हो। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने जहरीला इंसान फिल्म में शैलेंद्र सिंह की जुबानी पंचमदा के संगीत में ये बात हम तक पहुंचाई है कि सांप से बढ़ के जहरीला इंसान है। क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं।

आज ये गीत आप सभी को सुनाते हुए, सांप कांटे तो क्या करे, रमेश की सलाह सुनिए। वो कहते हैं कि 50,000 से भी अधिक लोग सांप काटने से मारे जाते हैं। झारखंड से औसतन 1,000 से भी अधिक मौतें दर्ज होती हैं अक्सर, मगर ये मौतें सबसे ज्यादा घबराहट, झाड़ फूंक और देरी से इलाज के चलते होती हैं। तो उनका कहना है कि आप सबसे पहले पीड़ित को शांत रखें, अगर उन्हें सांप काटा है उन्हें भागने न दे, वहीं जिस अंग पर उन्हें काटा गया है उसे स्थिर रखे, जितना जल्दी हो सके पीड़ित को नजदीकी अस्पताल पहुंचाए और यदि संभव हो तो सांप की तस्वीर ले ले, पर पकड़ने की कोशिश न करे, वो आपको भी काट सकता है। और रमेश बताते हैं कि सांप काटने पर कुछ लोग ब्लेड से चीरा लगाने लगते हैं, ऐसा कभी न करें, ना ही मुंह से जहर चूसने की कोशिश करें, झाड़ फूंक या देरी न करें। पीड़ित को अस्पताल पहुंचाना सबसे ज्यादा जरूरी है, संरक्षण की जरूरत है। स्कूल, कॉलेज, पंचायत स्तर पर वर्कशॉप कराए जा सकते हैं, युवाओं को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है और वो खुद बीच बीच में दक्षिण भारत में जाते हैं, कई शहरों में प्रशिक्षण खुद लेते हैं और उनका सपना यह है कि हर गांव में कम से कम एक सर्प मित्र हो जो सांप को मारे नहीं बल्कि बचाए, और इससे न सिर्फ इंसानी जाने बचेगी बल्कि वन्य जीवों का भी संतुलन बनाए रहेगा। आज हम चाहते हैं इस इंसान को हम जरूर सैल्यूट करें जिनका नाम है रमेश महतो, जिन्होंने 7,000 से भी सांपों की ज्यादा सांपों की जानें बचाई और इंसानों की भी जानें बचाई हैं। विश्व सर्प दिवस के उपलक्ष्य में रमेश जी की यह कहानी आपको कैसे लगी मुझे बताइएगा। मैं आरजे अमित आप सभी से विदा ले रहा हूं, जल्द ही हमारी अगले शो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड टेक केयर। और हाँ, 8657-66107 पर हमें बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। सुनिए 11 बजे समाचार और हिंदी में समाचारों के उस पार आप सभी को अगले शो में ले जाएंगे हमारे अगले आरजे। सुनते रहना FM रेनबो।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर FM रेनबो और समय हो चुका है अब तक के कुछ मुख्य समाचारों का। रेल मंत्रालय ने रेल टिकट बुकिंग को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए IRCTC की वेबसाइट का एक नया वर्जन जारी किया है। IRCTC ने इस वर्जन में 4 बड़े सुधार किए हैं। पहला, इसमें फालतू कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के लिए 48,000 करोड़ रुपए का बिजली बकाया माफ करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने 7.5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों के बिजली बिल माफ कर दिए हैं। हालांकि पुराने बकाया बिलों की वजह से कई किसानों को नया बिजली कनेक्शन लेने में परेशानी हो रही है। इस समस्या को हल करने के लिए ये फैसला किया गया है। और समाचार में आगे, फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। और समाचार के अंत में, भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम के एजबेस्टन में पहले एक दिवसीय मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिएगा इसी फ्रिक्वेंसी पर।

0: क्या बात है,
1: मेरे नसीब में तू है।
0: लता दीदी की आवाज, आनंद बख्शी साहब ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी की कॉम्पोजिशन। नसीब से सुना आपने ये गाना, नसीब से सुना आपने ये गाना।
1: सबका नसीब, एवरीबॉडी
0: कम ऑन। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। शर्मीन संग शामिल हो चुके हैं आप, अगर तो हाजिरी लगाइएगा। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और इस गाने के साथ ब्रेक फ्री इस प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। कैसे हैं आप सब, गुड मॉर्निंग करते हैं आपको। और जी, कहते हैं ना कि एक बार जो लिख दिया गया नसीब में वो बदला नहीं जा सकता। कई लोगों को आपने ऐसे बोलते सुना होगा, बुजुर्गों को स्पेशली। लेकिन अगर बात जिंदगी की है तो शायद ये नियम उतना लागू नहीं होता, क्योंकि जिंदगी कोई फाइनल पब्लिश्ड किताब नहीं है, है ना। ये तो एक ड्राफ्ट की तरह है जिसमें हम हर दिन कुछ नया लिख सकते हैं, लिखते रहते हैं, और कुछ पुराना जो है वो उसको मिटाते भी हैं, एटलीस्ट अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, कुछ गलतियां सुधारते हैं, और कभी कभी पूरा के पूरा चैप्टर ही जो है अपनी लाइफ का बदल देते हैं। आज के ब्रेक फ्री में बात हम यही करने वाले हैं, उस आज़ादी की, उस फ्रीडम की जो हमें तब मिलती है जब हम खुद को एक फिक्स्ड वर्जन समझना बंद कर देते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, है ना, अपनी ज़िंदगी के इस ड्राफ्ट को थोड़ा और प्यार से एडिट करने की शुरुआत कर ही लेते हैं, एटलीस्ट कोशिश तो करते हैं अभी के लिए। लेकिन ये गाना हो जाए, रघुवीर यादव शंकर महादेवन की आवाजें हैं, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय की कॉम्पोजिशन। द जोया फैक्टर से आ रहा है लकी चार्म।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जब तक है जान से सुना आपने ये गाना रबी शेरगिल की आवाज से, गुलजार साहब ने इसे लिखा है, रहमान की कॉम्पोजिशन। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। ब्रेक फ्री ये प्रोग्राम चल रहा है जहां हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी लाइफ का जो ड्राफ्ट है उसको हम एडिट करते रहते हैं, कर सकते हैं, ताकि एक एक टाइम ऐसा आए जब वो फाइनल परफेक्ट जो है वो रिजल्ट हमको मिल जाए। लेकिन लाइफ जो है आई थिंक वो पूरी हमारी इसी में निकल जाती है कि उसको हम काटते छांटते रहे हैं ना, इसको किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में होने वाली उसको एकदम फाइनल ड्राफ्ट नहीं समझना चाहिए। और इसी जो थिंकिंग से निकलने का, ब्रेक फ्री होने की आज हम बात करें। कभी आपने ध्यान दिया है कि फ़ोन में कोई मैसेज गलत टाइप हो जाए तो आप जो है उसको जल्दी से डिलीट कर देते हैं ना, लेकिन लाइफ में कोई गलती हो जाए तो अक्सर उसी गलती को अपनी पहचान बना लेते हैं हम। मैंने ये फैसला गलत ले लिया था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और मुझसे ये नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन एक गलती सिर्फ एक लाइन होती है, पूरी कहानी नहीं होती, है ना। ड्राफ्ट का मतलब ही होता है कि उसे बेहतर बनाने की गुंजाइश है। अभी भी हो सकता है आज जो चीज़ आपको बिल्कुल ही असफलता जैसी लग रही है वही कल आपको किसी नए खूबसूरत चैप्टर की शुरुआत बना दे। तो इसको ऐसे लीजिएगा कि अभी तक आपकी लाइफ का फाइनल ड्राफ्ट नहीं आया है, आप अभी एडिटिंग की स्टेज में हो। यार रहमान नरेश अय्यर की आवाज में रंग दे बसंती से आएगा ये गाना, प्रसून जोशी ने इसे लिखा है, यार रहमान।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

हाँ जी, म्यूजिकली योर्स, आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप, ब्रेक फ्री ये प्रोग्राम चल रहा है और हम बात कर रहे हैं कि हमारी लाइफ का ड्राफ्ट जो है उसको हम एडिट कैसे जिंदगी भर जो है वो करते रहते हैं इस कोशिश में कि एक अच्छा वर्जन बनकर सामने आए हम, है ना। हम अक्सर अपने पुराने वर्जन को पकड़े रहते हैं, लेकिन और मतलब बात तो ये हो रही है इसमें कि हम ये जो चीज़ सोच के बैठते हैं कि नहीं बस अब इसके आगे हम और कुछ ग्रो नहीं कर सकते, हम जैसे हैं बस वैसे ही रहने वाले हैं, इस थिंकिंग से ब्रेक फ्री होने की हम बात कर रहे हैं आज। तो जैसे कि मैंने कहा कि अपने पुराने वर्जन को हम इसलिए भी पकड़े रहते हैं क्योंकि लोगों ने हमें उसी रूप में देखा होता है, लेकिन सोचिए अगर किसी किताब का राइटर हर नए एडिशन में कुछ बदलाव कर सकता है तो इंसान क्यों नहीं कर सकता, मतलब ये तो मुमकिन भी है ना। तो कोशिश इंसान को करनी चाहिए, अपनी पसंद आपकी बदल सकती है, आपके सपने बदल सकते हैं, आपकी प्रायोरिटीज बदल सकती हैं और ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये ग्रोथ कहते हैं इसको। खुद को अपडेट करना, अपने पुराने रूप को एक तरह से ठुकराना नहीं होता बल्कि उसे थैंक यू कहकर आगे बढ़ जाना होता है कि हाँ तुम भी अच्छे थे लेकिन अभी इस जो ये जो टाइम चल रहा है उसमें मुझको अपडेट होने की ज़रूरत है, है ना, और ये वाला जो वर्जन है वो अब पुराना हो गया है। तो ऐसे नहीं है कि तुम बुरे थे लेकिन तुम उस वक्त के लिए, उस टाइम के लिए सही थे, अभी के टाइम के लिए मुझे खुद को थोड़ा सा एडिट करके और अपडेटेड वर्जन बनने की ज़रूरत है। बस यही सोच के आपने जो है आगे बढ़ना है, ग्रो करते रहना है और फिर से उड़ चलना है। रॉक स्टार से आ रही ये गाना मोहित चौहान गाएंगे, एआर रहमान की कॉम्पोजिशन। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 एफएम रेनबो पर, बिकॉज़ वी आर म्यूजिकली योर्स।

बात है। शंकर एहसान लॉय की कॉम्पोजिशन, मोहन ने इसे गाया, प्रसून जोशी ने लिखा, लंदन ड्रीम से सुना आपने ये गाना खाना बदोश। आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप ब्रेक फ्री प्रोग्राम में। हम जिंदगी के ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, जिसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है, कि इसमें अंडू का बटन नहीं होता, लेकिन एक नया पन्ना जरूर होता है। अगर कोई चैप्टर पसंद नहीं आया तो अगला चैप्टर लिखने का मौका हमेशा आपके पास होता है। कभी कभी हमें पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत भी नहीं होती, बस एक छोटा सा एडिट करना होता है, एक नई आदत, एक नया फैसला, एक नई कोशिश, क्योंकि परफेक्ट वर्जन नाम की कोई चीज होती नहीं है वैसे। बस बेटर होते हुए आपके ही डिफरेंट वर्जन जो है वो आपको मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के ब्रेक फ्री में हमने बात की कि अपनी लाइफ के ड्राफ्ट को किस तरह से एडिट करते रहते रहते करते करते करते हम जो है एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा जो गोल होता है कि हम जिस तरह से अपनी लाइफ को देखना चाहते हैं एग्जैक्टली वो ना सही, लेकिन एटलीस्ट उसके आसपास, या आप कुछ आपकी एडिटिंग स्किल्स जो है वो इतनी कमाल की है तो शायद आप एग्जैक्टली वो वर्जन हासिल कर ही लें। लेकिन कुछ भी हो, वो जो एडिटिंग है आपके लाइफ की ड्राफ्ट की, वो चलती रहनी चाहिए। एडिटिंग इम्पोर्टेंट है ना। फिर वो फाइनल रिजल्ट से आप कितने सेटिस्फाइड हैं, वो एक अलग चीज है बिल्कुल। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से आ रहा है ये गाना, सूरज जगन जॉय बरुआ की आवाजें, जावेद अख्तर साहब ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय की कॉम्पोजिशन। कीप एडिटिंग योर लाइफ, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।

रमन महादेवन की आवाज में सुना आपने ये गाना तारे जमीन पे, इस फिल्म से था ये गाना और प्रसून जोशी ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय की कॉम्पोजिशन। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप ब्रेक फ्री इस प्रोग्राम को। यहीं रुकने का वक्त हो चला है। इसमें आज हमने बात की कि किस तरह से हमारी लाइफ का जो ड्राफ्ट होता है उसको हम एडिट करते रहते हैं और उसको करते रहना चाहिए। पिछले वर्जन पे, अपने पुराने वर्जन पे ही सेटिस्फाइड होकर नहीं बैठना चाहिए कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। जब तक जिंदगी है तब तक जो है वो एडिटिंग चलती रहती है, चलती रहनी चाहिए। और यही तो खास बात है ना इस लाइफ की, कि हमारे पास जो है हमको मौका भी मिलता रहता है कि हम उसको एडिट करते रहें और बेहतर से बेहतर बनते रहें। तो आज बस यही था ब्रेक फ्री में, यही याद दिलाना था आपको कि आप अपनी जिंदगी की फाइनल कॉपी नहीं हो, आप एक खूबसूरत वर्क इन प्रोग्रेस हो। कल का जो आप, मतलब कल के जो आप थे और आने वाले जो आप हैं, वो दोनों अलग हो सकते हैं और इसमें कोई भी ऐसी परेशानी वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बदलाव ही तो लाइफ की सबसे खूबसूरत, क्या कह सकते हैं उसको, एडिटिंग है, है ना। इतनी फाइन एडिटिंग आप फिर, मतलब एक वक्त ऐसा आता है कि आप अपनी लाइफ को इतना ब्यूटिफुली फाइन एडिट कर देते हो कि आपको खुद ही ताज्जुब होता है कि ये मैंने क्या ही कर दिया अपनी लाइफ के साथ। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो अच्छी वाली साइड में हो, इस तरह से एडिट कीजिएगा। और आपको बता दें, इसी के साथ हम ब्रेक फ्री को यहीं रोकते हैं। 12 बजे आएगी न्यूज़, 12:02 पर म्यूजिक कैफे शुरू हो जाएगा जो कि सिर्फ आधे घंटे के लिए ओपन रहने वाला है, तो जल्दी से वहां आ जाइएगा। अभी के लिए आए ब्रेक फ्री से जाते जाते आपको सुनाते हैं सिद्धार्थ महादेवन की आवाज में ये गाना, भाग मिल्खा भाग से आएगा ये गाना, प्रसून जोशी ने लिखा, शंकर एहसान लॉय की कॉम्पोजिशन में।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर FM रेनबो और समय हो चुका है अब तक के कुछ मुख्य समाचारों का। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर ₹15.50 प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि ATF के निर्यात पर कर बढ़ाकर ₹14.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर ₹2.50 प्रति लीटर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। इस क्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होती है, जिससे संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। दिल्ली के जंतर मंतर में अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत पर लगातार नजर रखने और जरूरत पड़ने पर उन्हें चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार को दिए हैं। सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने ये निर्देश दिए। और समाचार में आगे, मध्य रेल की लोकल ट्रेन में कल देर रात सीट को लेकर हुए झगड़े में 3 यात्री घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि घटना अंबरनाथ जाने वाली लोकल ट्रेन के सामान रखने वाले डिब्बे में सीट साझा करने को लेकर कुछ यात्रियों के बीच तीखी बहस हो गई, जो हाथापाई में बदल गई। घटना के संबंध में आगे की जांच जारी है। और समाचार के अंत में, भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर खिलाड़ी चीन की हान यू को सीधे सीटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी पर।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: हाँ जी, म्यूजिकली योर्स आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो. शर्मीन संग शामिल हैं आप और म्यूजिक कैफे ये प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ मैं. आज हम ना किसी आम से कैफे में नहीं है, बिल्कुल एक खूबसूरत से फूलों के बगीचे वाले कैफे में बैठे हैं. ये कैफे हमारा इतनी प्यारी खूबसूरत और कलरफुल जगह पर है. हाँ जी, एक बगीचे के बीच में आप इमेजिन कीजिएगा कि हमारा ये कैफे है. और ज़रा सोचिए कि एक ऐसा कैफे जहाँ चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हों, तितलियाँ एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही हैं, हल्की सी ठंडी हवा फूलों की खुशबू अपने साथ ला रही है और बैकग्राउंड में बज रहा है सुकून भरा गाना. यहाँ मेन्यू में सिर्फ कॉफ़ी और डेजर्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि आज की स्पेशल सर्विंग जो है वो हमारे ये जो सॉन्ग बुके है, हम इसको बनाएंगे एक एक एक, जैसे जैसे गाना हम प्ले करेंगे वो एक तरह से एक फूल की तरह होगा और उसको फिर एंड में हम सॉन्ग बुके जो है पूरा बन जाएगा और फिर हम आपको ही प्रेजेंट करेंगे खूबसूरत गानों का एक ऐसा गुलदस्ता जहां हर गाना अपने साथ एक एहसास, एक याद और एक कहानी लेकर आता है. तो चलें शुरुआत करते हैं ये सॉन्ग बुके बनाने की, जिसका जो पहला फूल है, ये जो पहला गाना है वो है ये किशोरदा की आवाज़, नीरज ने इसे लिखा, एस डी बर्मन जी की कॉम्पोजिशन, प्रेम पुजारी से आ रहा है ये गाना.

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

हाँ जी, म्यूजिकली योर्स आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो। शर्मीन संग शामिल हैं आप और म्यूजिक कैफे हमारा बिल्कुल ओपन है, जो कि बस आज आधे घंटे के लिए ओपन रहने वाला है, क्योंकि 12:30 बजे जो है आप सुन पाएंगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। तो जितना भी हमारे पास टाइम है, हम ये जो हमारा खूबसूरत कैफ़े है, जैसे कि मैंने कहा, आज एक बगिया में हमारा कैफ़े लगा हुआ है, जहाँ आसपास इतने रंग बिरंगे फूल हैं, तितलियां हैं। तो दोस्तों, इस गार्डन का हर फूल अपनी एक अलग पहचान रखता है। कुछ फूल अपने रंगों से जो है इस जगह को और खूबसूरत बना रहे हैं, कुछ अपनी खुशबू से दिल जीत रहे हैं, और कुछ बिना कुछ कहे बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिला देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर गाना अपना एक अलग जादू रखता है ना, कुछ गाने चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, कुछ पुरानी यादों को वापस लाते हैं, और कुछ हमें बस एक खूबसूरत पल में रोक देते हैं। तो इसी तरह के गाने जो है एक एक करके हम फूल की तरह अब तक पेश कर रहे हैं, ताकि फिर म्यूज़िक कैफ़े के एंड में हम जो है एक बहुत ही प्यारा सा बुके आप लोगों को गिफ्ट कर दें। सॉन्ग बुके बना रहे हैं हम, और यही खूबसूरत गार्डन में हमारा ये कैफ़े लगा हुआ है, जहाँ जो है म्यूज़िक भी है, प्रकृति, और ये दोनों मिलकर अपनी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। इसके बारे में, इस कैफ़े के बारे में हम और बात करेंगे कि किस तरह का है कैफ़े यहाँ, क्या क्या और कुछ ख़ास है। अभी के लिए तो ये गाना गाएंगी चिन्मयी, चेन्नई एक्सप्रेस से। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसको लिखा, विशालन शेखर की कॉम्पोजिशन है। गोपी सुंदर साथ देंगे चिन्मयी का। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 एफएम रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

0: तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच-सच देना। डन
1: डन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मी से निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

रफ़ी साहब, लता दीदी की आवाज़ें, बख्शी साहब के अल्फाज, आराधना फिल्म से सुना आपने ये गाना। और बिल्कुल बागों में बहार है जहां हमारा ये म्यूज़िक कैफ़े लगा हुआ था आज। और इस कैफ़े की एक छोटी सी परंपरा भी ये है कि यहां जो आने वाला है, हर मेहमान अपने मूड के हिसाब से एक फूल और एक गाना चुनता है। किसी के लिए सूरजमुखी जैसा चमकदार और खुशियों से भरा गाना, किसी के लिए गुलाब जैसे खूबसूरत याद, और किसी के लिए चमेली की तरह सुकून देने वाली धुन। क्योंकि जैसे हर दिन जो है वो सारे फूल एक जैसे नहीं खिलते, वैसे ही हर मूड भी हर दिन बदलते रहता है। और संगीत का एहसास जो है इन धुन के ज़रिए जो है आपको हम दिलाने की कोशिश कर रहे थे म्यूज़िक कैफ़े में। आपको बता दें 12:30 बजे उमंग ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आएगा, इसीलिए म्यूज़िक कैफ़े को यहीं रोकने का वक्त हो गया है। हर गार्डन में ना एक पसंदीदा कोना होता है, सीक्रेट जो प्लेस होती है गार्डन की, और हमारे म्यूज़िक कैफ़े में वो है फूलों के बगीचे में छिपी हुई एक छोटी सी बेंच, जहाँ लोग आते हैं थोड़ा रुकने के लिए, अपने ख्यालों को लिखने के लिए, हवा को महसूस करने के लिए, और एक ऐसे गाने को सुनने के लिए जो उनके दिल की बात कहे। और इस तरह के गाने एक एक करके फूल की तरह हमने आप तक पहुँचाए, और गार्डन की तितलियाँ अब अपने ठिकाने की तरफ लौट रही हैं, और हमारा सॉन्ग बुके भी बिल्कुल तैयार हो चुका है आपकी यादों में खुशबू छोड़ने के लिए। और इसी के साथ जश्न बहारा आपको सुनाते हैं जावेद अली की आवाज़, जोधा अकबर से आएगा ये गाना, जावेद अख्तर साहब ने इसे लिखा, ए आर रहमान की कॉम्पोजिशन। 1 बजे न्यूज़ आएगी और 1:02 पर आपकी रिक्वेस्ट आर प्रोग्राम के साथ मैं आ जाऊंगी हिट एंड हॉट लेकर। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। चलिए हमेशा की तरह करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर से विचार से, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी का।
2: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
1: और छत्तीसगढ़ लुकाउपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी जी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: अडोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी।
2: सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी W थापा।
1: आप सबके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
1: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक विकास की।
2: कल हमने बात की थी मिस्र की सभ्यता की और जाना था कि कैसे उन्होंने पेपरस को लेखन सामग्री बनाया और लेखन की विधा का विकास किया। आज के एपिसोड में हम खोलेंगे एक और नया और बेहद रोचक अध्याय।
1: तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत की, यानी अपने देश की। तब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ
2: जी।
1: लेकिन आइए अब जानते हैं कि भारत में लोग लिखते कैसे थे।
2: प्राचीन भारत में ज्ञान का संरक्षण मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से होता था,
1: यानी वाचिक परंपरा
2: जी। वेदों को गुरुओं ने हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से संरक्षित रखा। धीरे धीरे लेखन का प्रचलन बढ़ा।
1: श्रोताओं, भारत में लिखने के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल हुआ। भोजपत्र एक विशेष प्रकार का लेखन पत्र था जो भोज या भूर्ज वृक्षों की छाल से बनाया जाता था। बता दें कि ये वृक्ष हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है
2: जी।
1: अब प्रश्न ये उठता है कि भोजपत्रों को लिखने योग्य कैसे बनाया जाता था। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: अजीत जी, भोज या भुर्ज वृक्ष की बाहरी छाल को सावधानी से निकाला जाता था। उन्हें सुखाकर और समतल बनाकर उन पर वनस्पति से बनी स्याही से लिखा जाता था
1: जी। श्रोताओं, भोज पत्रों पर कई प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गईं। जब कागज नहीं था तो भोज पत्र ही विद्वानों का नोटबुक था। भोज पत्र पर ऋग्वेद, अथर्ववेद और कश्मीर क्षेत्र में राजतरंगिनी की मूल प्रतियां मिली हैं। अनेकों बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। कई प्राचीन नाटक भी भोजपत्रों पर लिखे मिलते हैं।
2: तो श्रोताओं, भोज वृक्ष की छाल पर सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे गए, उनमें भारत का इतिहास, धर्म, संस्कृत, साहित्य, गणित, ज्योतिष और दर्शन भी सुरक्षित किया गया।
1: और हाँ श्रोताओं, भोज पत्र के अलावा दक्षिण भारत में ताड़ पत्र पर भी लिखा जाता था। इसके अलावा ताम्र पत्र और शिलालेख भी हमें मिलते हैं।
2: लगभग पहली दूसरी शताब्दी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मिस्र में स्क्रॉल बनाए जाते थे, पन्नों पर भी लिखा जाता था। लेकिन अब मानव सभ्यता में शुरू हुआ एक और नवाचार
1: जी।
2: लोगों ने पन्नों के किनारों को जोड़कर पुस्तक बनानी शुरू की। अजीत जी, उन पुस्तकों को क्या कहा गया?
1: विमलेश जी, उन पुस्तकों को कोडेक्स कहा गया, जो आधुनिक पुस्तक का पूर्वज है
2: जी।
1: कोडेक्स प्रारूप से बहुत से लाभ हुए, जैसे किसी भी पृष्ठ पर तुरंत पहुंचा जा सकता था, पन्नों के दोनों ओर लिखा जा सकता था
2: और अधिक से अधिक जानकारी एक ही पुस्तक में संग्रहित की जा सकती थी
1: जी।
2: कोडेक्स का विकास रोमन साम्राज्य में हुआ। आइए जानते हैं

0: कुछ और बातें।
1: मध्य युग में पुस्तकें चर्म पत्रों पर भी लिखी जाती थी। यूरोप के मठों में विशेष कक्ष होते थे जिन्हें स्क्रिप्टोरियम कहा जाता था। यहाँ लोग रात दिन बैठकर मूल पांडुलिपियों की नकल करते थे।
0: जी।
1: लिखने या नकल करने वालों को स्क्राइब्स कहा जाता था।
0: नकल करने वालों को बहुत सावधान रहना होता था। वे धीरे धीरे शब्द ब शब्द कई बार ऊंचे स्वर में पढ़कर और उन्हें दोहरा दोहरा कर लिखते थे क्योंकि कोई गलती न हो जाए, क्योंकि गलती हो जाने पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें चाकू से खुरचना पड़ता था जिससे कागज या चर्म पत्रों को नुकसान होता था।
1: जी, तो धीरे धीरे कोडेक्स प्रारूप ने पुस्तकों का रूप धारण किया और इनसे मानव सभ्यता के पठित ज्ञान में और अधिक वृद्धि हुई।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: कोडेक्स किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोडेक्स किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन के एक पाठ पर आधारित है जिसमे विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन के बारे में उदाहरणों सहित सविस्तार समझाया गया है और बताया गया है कि इसका निदान किन किन उपायों से हो सकता है।
2: जलवायु परिवर्तन। साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश, आप सबका स्वागत है हमारी रेडियो गोष्ठी में। आज की गोष्ठी का विषय है धरती करे पुकार। साथियों, इन दिनों सभी संचार माध्यमों में एक विषय छाया हुआ है और वो विषय है जलवायु परिवर्तन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है, डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: साथियों, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरण संकट है जिससे आज सारी दुनिया जूझ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नमिता से। तो नमिता जी, पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या इसे मौसम का परिवर्तन कहेंगे?
3: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है।
2: जी।
3: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल अलग है।
2: जी, लेकिन वो कैसे?
3: जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर। ये दो शब्दों से बना है, जल और वायु।
2: जी।
3: यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है।
2: जी।
3: लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है, यानी वर्ल्ड वाइड।
2: जी।
3: तभी तो दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और विचार विमर्श के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।
4: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं, इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी।
2: जी।
4: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है।
2: जी। डॉक्टर दिवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है।
4: जी।
2: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या है, यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है?
4: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे
2: जी।
4: और स्थायी हो जाए तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
2: जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारे जमाने में मौसम ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है।
4: जी
3: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है, पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम या पहले से बहुत ज्यादा हो गई है।
2: जी।
3: और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में या वैश्विक हो गई है, तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
4: जी, जैसे कि अनियमित बारिश और बाढ़ का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और इनके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, बहुत अधिक संख्या

0: में तूफानों या चक्रवात का आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना।
1: लेकिन दिवाकर जी, इसके कुछ कारण तो होंगे?
0: बिल्कुल दिनेश जी, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों यानी हरित गृह गैसों का बढ़ना। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर यह बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
1: अच्छा
0: जी, और इससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
1: डॉक्टर नमिता
2: जी,
1: हमारे विद्यार्थी श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं।
2: इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है,
0: और इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसों की बात है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख गैसें हैं। जी, तो इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
2: एक और उदाहरण लीजिए, जैसे धूप में खड़ी कार कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है।
0: जी,
2: ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए ऐसा ही काम करती हैं।
1: अच्छा,
2: और फिर होता ये है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ तूफान बढ़ जाते हैं, इससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
1: बहुत सुंदर उदाहरण दिया। तो आप बात करते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्यों है?
0: देखिए दिनेश जी, सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई, और कटाई की तुलना में पेड़ कम लगाना। वैसे नमिता जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल,
2: और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा।
0: जी,
2: और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे, और इससे बाढ़ तो आएगी ही।
1: बिल्कुल,
2: समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा।
0: एक और जरूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा।
1: जी,
0: शोध बताते हैं कि पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन हुए, लेकिन बहुत कम।
1: जी,
0: लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इत्यादि को जलाने, वनों की कटाई करने, वाहनों और उद्योगों के बढ़ने के कारण बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा।
1: जी, इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। क्या वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं?
2: जी बिल्कुल, वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कारखानों और भारी मशीनों से भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इनका उपयोग आप संतुलित तरीके से करें।
1: जी, तो आइए अंत में जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जा सकता है।
0: देखिए दिनेश जी, पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
2: बिल्कुल,
0: और यदि पेड़ काटे भी जाएं, तो काटने की तुलना में और अधिक पेड़ लगाए जाएं।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये है कि हम वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें।
0: जी,
2: और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें।
1: बिल्कुल, तो आइए अब जानते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं।
2: साथियों, समाचारों में आप अक्सर बाढ़, तूफानों, भूकंप इन सब बातों की चर्चा सुनते रहते हैं। इसका कारण बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन ही तो है।
0: जी
1: बिल्कुल,
0: और दिनेश जी यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं से एक विशेष बात साझा करना चाहूँगा।
1: जी,
0: क्या आपको पता है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? भाई अब तो ठंडे कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ गया है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। अब उदाहरण के लिए 2025 के बाद से हमारे देश का औसत तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है।
0: जी,
2: जिसके कारण सर्दी सामान्य से बहुत कम थी और गर्मी सामान्य से ज्यादा।
1: ये तो बड़ी गंभीर बात है, और ऐसा दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। अभी समय है इस पर गंभीरता से विचार करने का और उस पर अमल करने का।
0: जी,
1: कहीं ऐसा न हो

0: बहुत देर हो जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम।
3: इस कार्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक की भूमिकाओं की चर्चा की गई है और कतिपय शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया गया है, जिनके द्वारा शिक्षक बच्चों को नवाचारी विधियों के प्रयोग से बच्चों को और अधिक बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं।

0: अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं। वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें।
1: अपने अपने किताबें निकालो, चलो चलो अपने अपने पार्ट निकालो।
2: जी
1: मैं भी कह रहा हूँ, चलो शाबाश। हाँ गोपाल, इसको बोलो। हाँ इधर मेरी तरफ देखिए। हाँ शाबाश, अब मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे पीछे दोहराना।
2: जी गुरुजी,
1: समझ गए?
2: जी।
1: अच्छा शुरू करते हैं हम।

0: गुरुजी, पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है?
1: तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो।
0: जी
1: गोपाल
2: जी।
1: बेटा आगे तुम पढ़ाओ।
2: जी गुरुजी। पानी
3: पानी,
2: कुओं
3: कुओं,
2: नदियों
3: नदियों,
2: तालाबों
3: तालाबों
2: एवं झरनों से मिलता है,
3: एवं झरनों से मिलता है।
0: गुरुजी, झरना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते।
1: फिर बीच में बोले, आगे पढ़ो, चलो चलो शाबाश।
2: गंदे पानी के प्रयोग से,
3: गंदे पानी के प्रयोग से
2: अनेक बीमारियां हो जाती हैं,
3: अनेक बीमारियां हो जाती हैं।
0: गुरुजी।
1: हाँ बोलो।
0: पानी गंदा कैसे हो जाता है?
1: बीच बीच में ना बोलो, तुम अपना अपना पाठ पढ़ो। चलो जी, चलो जी, ठीक से बैठो, इधर पीछे हो जाओ।
4: आइए अब हम एक और कक्षा में चलें।
5: एकम पांच, पांच दूनी दस।
6: नमस्ते
7: नमस्ते
6: नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अच्छा बच्चों, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं, ठीक?
2: जी।
6: अच्छा तो बच्चों बताओ, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है?
8: हमारे गांव में दो कुएं हैं, एक तालाब भी है।
6: अच्छा
2: मास्टर
6: अच्छा।
2: जी, हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी, उसी से पानी लाते हैं।
6: शाबाश, बिल्कुल ठीक
0: मास्टर जी, वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है।
6: हाँ ये भी ठीक है।
9: मास्टर जी, हमारे घर में तो नल है।
6: शाबाश। अरे बच्चों, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे झरने, झील, तालाब, बावड़ी आदि।
2: मास्टर जी।
6: हाँ हाँ बोलो।
2: क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे?
6: हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा आप सब बच्चे ये लिखें कि पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हैं, ठीक?
2: जी मास्टर जी।
6: लिखो फिर, सब लिखो।
4: सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को? पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य, खोज, जिज्ञासा और आनंद का। आज के परिप्रेक्ष्य में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है।
10: दीदी। बोलो मालती।
11: दीदी, मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते।
10: तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो।
11: हाँ दीदी। अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी।
10: ठीक।
11: फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी।
10: हाँ, फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी।
11: जी।
10: इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा।
11: वाह, एकदम मेरा अपना शब्दकोश।
10: हाँ।
4: अब जिस शब्द पर अटको, शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की ये शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी, वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थी। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थीं। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये है इंदु जी के दिन की शुरुआत।
7: नमस्ते दीदी।
12: नमस्ते
7: दीदी।
12: नमस्ते, नमस्ते बच्चों, नमस्ते
13: दीदी। ये
12: अरे वाह, कितने सुंदर फूल हैं ये। प्रवीण, कहाँ से लाए तुम ये फूल?
7: दीदी, ये फूल प्रवीण अपने बगीचे से लाया है।
12: अच्छा
9: दीदी, इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं।
12: सच? प्रवीण, इन फूलों के क्या क्या नाम है बताओ तो जरा।
13: गुलाब।
12: गुलाब, बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण, और कौन कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहाँ?
7: दीदी मैं बताऊंगी।
12: नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्रवीण बताएगा। हाँ प्रवीण बताओ।
13: गुलाब। गेंदा।
12: हाँ
13: चमेली।
12: और हाँ
13: चमेली।
12: चमेली।
13: सूरजमुखी।
12: सूरजमुखी, शाबाश।
4: तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हाँ तेंदु जी, आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं?
12: देखिए, मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूँ। मेरे छात्र पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जैसे प्रवीण बहुत शर्मीले हैं, और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि प्रवीण को खास तौर पर कक्षा से जोड़ा जाए। आपने सुना ना अभी कि मैंने प्रवीण से ही फूलों के नाम पूछे। उसके बाद बात चली पौधों के हिस्सों के बारे में। स्कूल के आंगन में जाकर हमने देखा कि पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब सब बच्चे जानते हैं कि पौधों में जड़, तना, टहनी, पत्ते, फूल और फल होते हैं।
4: जी जी।
12: आप जानते हैं हमारी प्रयोगशाला है हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र।
4: स्कूल के आसपास का क्षेत्र?
12: जी, कभी कभी हम सब घूमने निकलते हैं। मैं बच्चों को दलों में बांट देती हूँ। एक दल रास्ते में दिखे पौधों के नाम लिखता है, एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है, और सबसे

0: छोटे बच्चे रास्ते में दिखे पक्षियों को गिनते हैं।
1: बहुत अच्छे।
0: इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। लौट कर हम बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
1: अरे इंदु जी, आपने तो गणित, वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को।
0: और मैंने भी तो सीखा इनसे
1: जी।
0: आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग के होते हैं।
1: हल्के नीले रंग के?
0: हाँ, मुझे ये बच्चों ने दिखाया।
1: अच्छा,
0: मैं जिस इलाके की हूँ ना, वहाँ ये पक्षी नहीं होता। और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं।
1: काहे की लिस्ट?
0: कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, कभी कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं।
1: इंदु जी, आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल खेल में पढ़ाने का।
0: देखिए, बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना तो बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है।
1: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दोस्तों, इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का ये सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक ठीक बता पाना चुनौती भरा है। तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं ये जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी पाठ में बनाए रखते हैं। वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यही है अच्छी शिक्षा विधि का गुण।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: बिल्कुल बिल्कुल म्यूजिकली योर्स आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो। शर्मीन संग शामिल हो चुके हैं आप दोबारा से हिट एंड हॉट। ये प्रोग्राम की भी शुरुआत हो गई है जिसमें हम आपकी पसंद के गाने प्ले करते हैं, लेकिन आज की थीम आपको पहले बता दूं, आपने उस थीम के अकॉर्डिंग मुझे आपके फेवरेट सॉन्ग्स पहुँचाने हैं। सो आपने आज रिक्वेस्ट करने ऐसे गाने जिनमें किसी प्रोफेशन का जिक्र आया है या उस फिल्म के टाइटल में किसी प्रोफेशन का जिक्र आया है। फिर से सुनिएगा, ऐसे गाने आपने रिक्वेस्ट करने हैं आपके फेवरेट सॉन्ग्स जो जिन गानों में जो है ना किसी प्रोफेशन का किसी पेशे का जिक्र आया है या किसी फिल्म टाइटल में उस प्रोफेशन का जिक्र आया है, और इस तरह के गाने आपने हमें भेज देने हैं 8657661071 पर। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। आए शो की शुरुआत करते हैं मुन्ना भाई MBBS के इस टाइटल ट्रैक के साथ। विनोद राठौड़, संजय दत्त, प्राची, प्रिया मिलके गाएंगे इसको। राहत इंदौरी, फरहाद ने मिलके इसे लिखा, अनुमा लिखी कॉम्पोजिशन।
2: जे हॉस्पिटल आ रहे लो मेरे बाप, अरे किधर किधर, अरे ब्रीच कैंडी, होल्ड मैन होल्ड, आई एम बिजी यार।

0: अरररररर तरुण नाम शू छे ए उन पैर ना
1: मारु नाम यन पर रास्कल
2: मुन्ना भाई एमबीबीएस मुन्ना भाई
3: श्रोताओं आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharati.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।

मीट ब्रोस गा रहे थे, शबीर अहमद ने लिखा मीट ब्रोस की कॉम्पोजिशन, जॉली LLB 2 से सुना आपने ये गाना, और इस गाने की रिक्वेस्ट की थी हमें अशोक जी ने, तेजस्वी और दिवाकर ने। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप, हिट एंड हॉट ये प्रोग्राम चल रहा है। और मैंने आपसे कहा है कि ऐसे गाने रिक्वेस्ट करें जिनमें किसी प्रोफेशन का जिक्र आया हो या उस फिल्म में किसी प्रोफेशन का जिक्र आया हो, ऐसे गाने आज आपने रिक्वेस्ट करने हैं और उसको भेज देना है।

8657661071 पर 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और इस गाने की रिक्वेस्ट हमें की है विजेंद्र जी ने अकोला से, और साथ ही साथ शुभ लक्ष्मी जी कह रही हैं कि डाकिया डाक लाया प्ले कर दीजिएगा, तो आए उनके लिए सुनाते हैं। पलकों की छाँव में से आएगा ये गाना, किशोर कुमार गाएंगे, वंदना शास्त्री साथ देंगी, गुलजार साहब ने लिखा, लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी की कॉम्पोजिशन।

मर्द फिल्म से सुना आपने ये गाना मर्द टांगे वाला, प्रयागराज ने लिरिक्स लिखे थे, अनु मलिक की कॉम्पोजिशन थी और मोहम्मद अजीज गा रहे थे इसे। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप और हिट एंड हॉट में मैंने आपसे कहा है ऐसे गाने रिक्वेस्ट करें जिनमें किसी प्रोफेशन का जिक्र आया हो या वो कोई ऐसा गाना किसी ऐसी फिल्म से जिस फिल्म के टाइटल में किसी प्रोफेशन का जिक्र आया हो। तो इस गाने की रिक्वेस्ट हमें फिरोज सिगनपुरिया जी ने की थी और आप भी जो है जल्दी से अपनी सॉन्ग रिक्वेस्टें भेजिएगा। अगला गाना आ रहा है पिंटो की रिक्वेस्ट पर रेडियो इस फिल्म से और वो कहते हैं कि नेक्स्ट थर्सडे ब्रॉडकास्टिंग डे भी है। हाँ जी, आप सभी को, हमारे सभी लिसनर्स को, इतने सालों से आप हमें सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आपको एडवांस में, बहुत ही ज्यादा एडवांस में आप सभी को हैप्पी ब्रॉडकास्टिंग डे। आप सुन रहे हैं तभी रेडियो जो है, इतने सारे एंटरटेनमेंट के माध्यम होते हुए भी आज भी रेडियो जो है वो जिंदा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी जैसे एक रेडियो आ रहा है ये गाना, हिमेश रेशमिया आदिति की आवाज है, सुब्रत सिन्हा ने इसको लिखा, हिमेश रेशमिया की कॉम्पोजिशन।

एक अनाउंसमेंट ये भी कि 1:30 बजे आप मराठी में समाचार सुन पाएंगे हमारे न्यूज स्टूडियो से, और 1:40 मिनट पर दोबारा से आपकी सॉन्ग रिक्वेस्टें लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगी हिट एंड हॉट लेकर। अभी के लिए आए आपको सुनाते हैं पंखों को हवा जरा सी लगने दो, ये गाना आ रहा है रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर से, सलीम मर्चेंट गाएंगे, जयदीप सहनी ने इसको लिखा, सलीम सुलेमान की कॉम्पोजिशन, दीपा पालकर की रिक्वेस्ट पर आ रहा है ये गाना। आपसे मैंने मांगे हैं ऐसे गाने जिनमें किसी प्रोफेशन का जिक्र आया है, या ऐसे गाने, ऐसे फिल्मों के गाने जिन फिल्मों के नाम में किसी प्रोफेशन का जिक्र आया है। भेजिएगा अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट 8657661071 पर, 8657661071 यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर।

स्कूली फिल्म से सुना अपने ये गाना, शब्बीर कुमार गा रहे थे, आनंद बख्शी साहब ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी की कॉम्पोजिशन। और इस गाने की रिक्वेस्ट हमें की थी चेतन कुमार ने, मुकेश वालिया ने देहरादून से, प्रकाश शिंदे जी ने। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हो चुके हैं दोबारा से, हिट एंड हॉट ये प्रोग्राम फिर से शुरू हो चुका है। आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट में प्ले कर रही हूँ। आज हमारी जो थीम है एस आर की, मैंने आपसे कहा है ऐसे गाने रिक्वेस्ट करें, ऐसे आपके फेवरेट सॉन्ग्स जिनमें किसी प्रोफेशन का जिक्र आया हो, गानों में आया हो या फिर उस फिल्म के टाइटल में किसी पेशे का, किसी प्रोफेशन का जिक्र आया हो, नाम आया हो, ठीक है। इस तरह के गाने या इस तरह की फिल्मों के टाइटल्स जिनमें इस तरह के नाम आए हैं, उन फिल्मों के आपने गाने हमें रिक्वेस्ट करने हैं। तो इस लव रैप में भी एक लाइन आती है, जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, तो इसलिए शायद हमें रूपाली ने इस गाने की रिक्वेस्ट की है, तो उनके लिए हम प्ले करते हैं ये गाना। क्रांतिवीर से आएगा ये गाना, अमित कुमार, सपना मुखर्जी, पूर्णिमा, सुदेश भोसले मिलकर गाएंगे इसे, समीर ने लिखा, आनंद मिलिंद की कॉम्पोजिशन।

लव रैप सुना आपने क्रांतिवीर इस फिल्म से. आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो हिट एंड हॉट में. आज मैंने आपसे पूछे थे ऐसे गाने जिनमें किसी प्रोफेशन का जिक्र आया हो, गाने या फिल्म जिसके नाम में किसी प्रोफेशन का जिक्र आया हो. जाते जाते आप सभी के एक बार नाम ले लूं मैं जिनके गाने रिक्वेस्ट नहीं हो पाए, प्ले नहीं हो पाए, और कुछ तो ऐसे हैं जिनके मैं प्ले कर ही दूंगी जाने से पहले सॉन्ग्स. तो हमें प्रथमेश डोंगरे ने विक्रोली से मैसेज किया था, प्रकाश शिंदे विजेंद्र जी अकोला से, स्वर्ण सिंह और उनकी फैमिली हमें सुन रही थी, प्रमोद चिंचोलकर, मीरा सिंह दादर से बाबा, संतोष जाधव, और हमें लालगिरी गोस्वामी, हेमलता और उनकी फैमिली सुन रहे थे. पंकज मोहर ने हमें मैसेज किया था, मुकेश वालिया ने देहरादून से, अभिजीत गभानकर और उनकी फैमिली सुन रही थी, दीपा पालकर बेंजामिन भाईंदर से सुन रहे थे, और हमें दयानंद गायकवाड़ जी ने लातूर से मैसेज किया था. साथ ही साथ ममता जायसवाल का मैसेज आया था, चेतन कुमार, फिरोज सिगनपुरिया, संदीप कुमार, और हमें मैसेज आया था अमरावती से दीपाली का, और हमें मैसेज किया था आप अपना नाम जो है वो सबसे पहले लिखा कीजिए ताकि मुझको ढूंढने में आसानी हो जाए. और मंगल जी, रोशनी जी ने मैसेज किया था, अजय सकरे ने इंदौर से, प्रणव शिंदे, अशोक पाटिल वर्ली से, शुभ लक्ष्मी, मुकेश कश्यप उनकी फैमिली और गुरमीत सिंह उनकी फैमिली हमें सुन रही थी, मुकुंद कुलकर्णी हमें पुणे से सुन रहे थे, सत्यनारायण जी राजस्थान से, राकेश माथुर जी ने मैसेज किया था, मिंटू और पिंकी, आरती अरोड़ा, इन सभी का मैसेज आया था, शुभदा, हितेंद्र दास, रजनीकांत पाटिल जी, विठल जी, दिग्दर्शन और कविता ने मैसेज किया था, अंकित पिंटो ने कॉल किया था, अमित भगत ने मैसेज किया था, धनंजय जी ने नवी मुंबई से मैसेज किया था, डॉक्टर अंजू ने अंधेरी से मैसेज किया था, गणेश पाटिल, विजय मोहबी और उनकी फैमिली हमें सुन रही थी. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेजेस का. अब मेरी आपकी मुलाकात होगी अगले महीने में. हाँ जी, प्रदीप अनंत कृष्णन जी ने भी मैसेज डाला है अभी हमें, और भी बाकी सभी को हम थैंक यू कहते हैं और बाय बाय कहते हैं शेफ के इस गाने के साथ. शुगल लगा, रघु दीक्षित गाएंगे, अंकुर तिवारी ने इसे लिखा, रघु दीक्षित की ही कॉम्पोजिशन है. आपको बता दें कि 2 बजे आप अंग्रेजी में न्यूज सुनेंगे, 2:15 बजे हिंदी में न्यूज आएगी दिल्ली से, और 2:30 बजे चला दोस्तों बोलू का ही इस मराठी प्रोग्राम के लिए. बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 एफएम रेनबो पर. अब जा रही है शर्मीन, अपना ख्याल रखें समय.

0: स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनके संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
1: There is an urgent need for us.
2: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1.7 अरब लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
1: 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन।
0: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
3: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया, और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, ओमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है।
3: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मा ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू

0: करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
1: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा, जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मानसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित किए। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजब

0: छत्रपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की 5वीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान सहित आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बेल्जियम में आयोजित तीसरे भारत यूरोपीय संघ व्यापार सम्मेलन में भाग लिया। सरकार ने ईंधन निर्यात की समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्लू ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज CBSE पाठ्यक्रम के अंतर्गत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई, कहा इससे छात्रों पर तनाव बढ़ेगा। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान की तैयारियां की गई हैं और व्यापक सुरक्षा तथा भीड़ प्रबंधन के इंतजाम भी किए गए हैं। अमरीका ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। मायामा में रोहिंग्यों के अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को ले जा रही दो नौकाओं के बंगाल की खाड़ी में डूबने से 500 से अधिक यात्रियों के मारे जाने की आशंका है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार, बने रहिए हमारे साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: नंदन वंदन अभिनंदन नमस्कार, सुस्वागत आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। संदेश टू सोल्जर्स के आज के संक में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे सोल्जर, एक ऐसे सिपाही से जिसने अपने कर्तव्य निष्ठा से अपने लिए, अपने देश के लिए हमेशा परचम लहराया है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह सहस्त्र सीमा बल से। सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के मेहमान हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी का। भागिंदर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू मैम। जय हिंद मैम।
0: जी जय हिंद। और आप जैसे सोल्जर से सिपाहियों से जब भी हम मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सीना जो है वो गर्व से फूल जाता है और हम ये महसूस करते हैं जैसे हम भी ना कहीं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता यहाँ अपने कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञापित कर रहे हैं। और आपकी जो मंद मुस्कान है, प्यारी सी मुस्कान है, वो इस बात का सबूत है कि 20 सालों से आपने जो अपनी सेवाएं दी हैं सहस्त्र सीमा बल के माध्यम से देश के प्रति, अत्यंत गौरवशाली रही होंगी। और आज हम अपने सभी श्रोताओं से साझा करना चाहते हैं कि 2005 में भागिंदर सिंह जी ने सहस्त्र सीमा बल में अपना पदार्पण कर अपने आप को वहां दर्ज कर अपने लिए एक मुकाम हासिल किया और इस मुकाम को, इस यात्रा वितरांत को इन्हीं के माध्यम आज हम सुनेंगे। तो आपका हम पुनः स्वागत करना चाहते हैं भागिंदर जी, और आप ही से जानना चाहते हैं कि ये जो 20 सालों की जो यात्रा है कितनी सुखद रही है।
1: जी मैम। जय हिंद मैम।
0: जी जय हिंद।
1: सबसे पहले तो मैं एफएम रेनबो को अपनी पल की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जो कि एफएम रेनबो के सभी कर्मियों को। मेरा जीवन बहुत सरल है मैम। मैं अपने गांव से, रामपुर भांगर से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर जो कि जेवर के पास है। मेरा जीवन जो है प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुआ, सरकारी स्कूल से, वहीं से मेरा जीवन स्टार्ट हुआ है, वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। मेरे पापा जी जो है एक किसान हैं, मध्यम परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। हम दो भाई, दो बहनें हैं और मेरी पत्नी, दो बच्चे।
0: वाह क्या बात है, सच में आपका जीवन बहुत ज़्यादा सरल है। पर यही कहूँगी कि आपकी सोच और आपकी सोच में जो आपके कर्म हैं वो सर्वोपरि हैं और आपकी जो सोच है यही आपको सहस्त्र सीमा बल की ओर ले गई। आप सर्वप्रथम हमें ये बताएं कि क्या वो ऐसी बात थी जिसने आपको ये प्रेरणा दी कि आपको भी फौज में भर्ती होना चाहिए।
1: मैं बताना चाहूँगा, मेरे गाँव में पुराने समय से ही काफ़ी फौजी हैं, छोटा सा गांव है, पर फौज में काफ़ी जो मात्रा में जो लोग हैं, जिसमें कि मेरे परिवार में से ही मेरे दादाजी, बाबा, दो ताऊजी और मेरे जो है ताऊजी के चाचा जी के जो लड़के हैं, हम पांच भाई हैं, पांचों में से चार जो है अपने जो है फौज में हैं मैम।
0: वाह क्या बात है। तो कहीं

0: ना कहीं वो परिवेश था, यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये अनुभूति पहले से हो गई थी कि आपके लिए वो रास्ता कौन सा है।
1: जी मैम बिल्कुल, ये जो है मेरे को प्रेरणा जो मिली है मेरे जो है ताऊ के लड़के थे उनसे, मेरे ताऊ जी से और गांव के जो फौजियों से उनसे मिली है मैम। मेरे को भी दिल था कि मैं भी जो है ये जो कैमोफ्लाइज वर्दी पहन के आते हैं जो ये मैं पहनूं और देश की सेवा करूं।
0: वाह क्या बात है। तो निश्चित रूप से आप लगातार किस्से कहानियां सुनते होंगे और उन किस्से कहानियों ने कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि हमारे मन में एक सपनों का सागर बनने लगता है, तो सपनों के सागर की ओर आकर्षित आप उन किस्से कहानियों से जरूर हुए होंगे।
1: जी मैम, मेरे जो ताऊ जी थे वो फौज में थे, उन्होंने पाकिस्तान की लड़ाई देखी है तो पाकिस्तान के किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे काफ़ी मात्रा में। जब जो 1962 में युद्ध हुआ था मैम, तो उसमें से जो है काफ़ी मात्रा में जो है हिंदुस्तान ने उनके जो सैनिक बंदी बनाए थे और लड़ाई जीती है, काफ़ी बार उन्होंने अपने बल का नाम रोशन किया है हमारे जो ताऊ जी थे, तो उनसे बहुत प्रेरणा मिली मैम।
0: जी बहुत बढ़िया। तो जब आप वो किस्से कहानियां सुनते थे तो क्या रग रग में, कहते हैं ना कि आपके जो आपका जो लहू होता है उसका संचार और भी ज्यादा तेज हो जाता है, कैसा होता था आपके साथ?
1: जी मैम, जैसे ही मैं किस्से कहानियां सुनता था तो मेरे अंदर एक अलग ही जोश होता था। सुबह को उठना, 4 बजे उठना, एक्सरसाइज करना, दौड़ भाग करना कि बस अब फौज में ही जाना है, बस और किसी की तैयारी नहीं थी मैम, सिर्फ ओनली फौज।
0: वाह क्या बात है। तो उस वक्त आपकी उम्र बहुत कम रही होगी।
1: जी मैम, मेरी उम्र जो है मैं 8वीं 7वीं से ही मैम जो है मैं फौज की तैयारी में लगा हुआ था। मेरा जो है गेम था फिजिकल, मेरे पहले से ही टफ था मैम, मैं कुश्ती और वेट लिफ्टिंग का बहुत शौकीन था मैम।
0: जी, तो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फिर आप फौज में गए।
1: जी मैम,
0: तो क्या प्रक्रिया रही, कैसे गए?
1: मैम मैं जैसे किससे कहानी सुनता था तो मेरी जो प्रक्रिया मेरे पापा जी से स्टार्ट होती है। मेरे पापा जी बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते थे, उनसे बोल देना तो मेरे को 3 बजे उठना है, तो उनको यार रात में 4 बजे उठना पड़े, 5 बार उठना पड़े, 6 बार, वो मेरे को सिर्फ उसी टाइम पर जगाते थे मैम जब मैं उनसे बोलता था।
0: वाह क्या बात है। तो निश्चित रूप से जब आप सेलेक्ट हुए होंगे तो पिताजी तो बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आप के ताऊ जी के बच्चे, ताऊ जी आपके जी, बाबा जी, सब फौज में रहे, लेकिन आप 4 भाई बहन, इनमें से कोई फौज में नहीं था। पिताजी खुद जो है उन्होंने देश का दूसरा कार्यभार संभाल रखा है, वो कहते हैं कि कृषि जो है हमारे जीवन का आधारभूत स्तंभ है, तो वो वहाँ मिट्टी से जुड़े हुए और आप फिर मिट्टी से फिर जुड़ गए देश के प्रति। तो उस वक्त उनके अंदर क्या चल रहा था कि बेटा अब सशस्त्र सीमा बल यहाँ अपनी सेवाएं देकर देश के प्रति अपने कर्तव्य निष्ठा निभाएगा?
1: मैम मेरे परिवार में से किसी ना किसी घर में से 2 या 3, किसी के 2 लड़के, 2 भी भर्ती उसी में सेना में, 3 है 3 भी, सिर्फ एक मेरा परिवार ऐसा था जो कि सेना में भर्ती नहीं था। उसके बावजूद मैम मेरे पापा जी को जब ऐसा लगा कि ये सेना में भर्ती हुआ है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे परिवार में खुशी की एक लहर दौड़ गई मैम, घर में, परिवार में, गांव में, तो उनको ऐसा लगा कि मेरे परिवार में से भी कुछ है। और जब मैं आ रहा था तो बोले बेटे कभी भी फौज में बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, क्योंकि मैं सुनता भी रहता था कि इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है लोग जो है छोड़ना करते हैं, ऐसा मत करना जो है। तो मैंने पापा जी को आश्वासन दिया, मैं ऐसा कभी नहीं होगा।
0: वाह क्या बात है,
1: देश से बहुत प्रेम है, मैं कभी नहीं आऊंगा।
0: वाह क्या बात है। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है ना, फैमिली सिस्टम, इसकी खास बात यही है, जिस तरह से बेटियों को जो ब्याह जाता है कहा जाता है कि जो जहाँ तुम जा रही हो वही तुम्हारा घर है, इसी प्रकार आपके पिताजी ने भी आपसे कहा कि वापस लौट कर मत आना, लेकिन शिद्दत के साथ ट्रेनिंग अपनी या तालीम अपनी पूरी हासिल करना। तो फिर बताइए कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई, कितने अंतराल की थी और कितनी जटिल, कितनी मुश्किल थी?
1: मैडम मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2005 में दिसंबर 15 को, तो मेरी ट्रेनिंग का ज्वाइनिंग मैंने दिल्ली 25 बटालियन घटोरनी में करी थी 15 दिसंबर 2005 को। तो उसके बाद मेरी ट्रेनिंग पीनातोली उत्तराखंड में हुई मैम, तो 1 साल की ट्रेनिंग थी। 1 साल ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी 18 बटालियन बीरपुर बिहार में।
0: वाह क्या बात है। और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कैसा लगता है? वो पल याद आते हैं, क्योंकि जब हम युवा होते हैं बहुत उमंग होती है, लेकिन अगर एक सिपाही की बात की जाए, एक सैनिक की बात की जाए, तो उसका जोश ना उतना का उतना रहता है। हम जितने भी ऑफिसर से मिलते हैं वो यही कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी को दोबारा जीना चाहते हैं। तो जो 20 सालों का जो समय रहा है, जिसमें आप अपना योगदान दिया है और अभी भी कर्तव्य निष्ठा के साथ कर्मठ सैनिक के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, तो अभी भी क्या महसूस होता है कि काश वो पल दोबारा से आ जाए, दोबारा से जिए उनको?

0: का झंडा यूं ही लहराता रहे, इसके लिए हमेशा हमें कार्य करना
1: जी,
0: है।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो जैसा कि इन्होंने खुद कहा हेड कांस्टेबल भागेंद्र सिंह जी ने कि बहुत सी यादें इनकी जुड़ी हुई हैं सशस्त्र सीमा बल से, बहुत सारी बटालियंस में आपने अपना योगदान दिया होगा, जगह जगह आपको डिप्लॉय किया गया होगा, उनसे जुड़ी हुई सारी किस्से कहानियां आज इनके माध्यम से हम जरूर सुनेंगे।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है आज की इस कार्यक्रम में जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। और आज के इस अंक में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी सहस्त्र सीमा बल से। और इनकी कहानी बहुत रोचक है जिसे इन्होंने खुद ही बताया कि किस तरह से इनका बचपन इतना शानदार रहा है। जिसका बचपन इतना शानदार होगा उसका वर्तमान और आगे चल के कहते हैं कि हमारा जो वर्तमान है वो हमारा भविष्य बनाता है। तो भविष्य तो सुखद ही होगा निश्चित रूप से, और सुखद उस व्यक्ति का जरूर होता है जिसे वो प्राप्त हो जाए जिसकी वो कामना करता है, क्योंकि जिसकी हम कामना करते हैं उसके लिए मेहनत भी बहुत करते हैं भागिंदर जी। क्यों, सच कहा ना? और आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि आपने मेहनत भी की, बहुत वर्जिश की, बहुत मेहनत करी और ईश्वर की कृपा से आपको वो प्राप्त हुआ जिसकी कहानियां, जिससे जुड़ी हुई कहानियां आप बचपन से सुनते आ रहे थे।
1: जी मैम।
0: जी, आप वर्तमान में 25वीं बटालियन सहस्त्र सीमा बल से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा कौन कौन सी बटालियन से आप जुड़े रहे और हर बटालियन की कुछ ना कुछ विशेषताएं रही होंगी, अलग अलग तरह के कार्यभार आपको दिए गए होंगे, वो सब बताएं हमें।
1: जी मैम, मैं सबसे पहले पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद 18 बटालियन बीरपुर बिहार में हुई, उसके बाद मैं फोर्स हेडक्वार्टर जो है डी जी टीम से कुश्ती के लिए क्लोज किया गया, तो मेरे को यहाँ पे गेम में काफ़ी दिन गेम

0: उसके बाद मेरे को जो है डेप्टेशन एनर्जी के लिए डेप्टेशन हुआ तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। एनर्जी करने के बाद वापस मैं 18 बटालियन में आया, 18 बटालियन के बाद 35 बटालियन में आया, जिसमें कि जो है झारखंड में थी।
1: वाह क्या बात है। अच्छा ये बताइए, क्योंकि आपको तो जैसा कि मैंने स्वयं अभी कहा, आपने पहले कहा कि वेट लिफ्टिंग में आपको सम्मान प्राप्त हुआ, तो जो आप वर्जिश करते रहे, सेनाओं में रहते रहते आप करते रहे, और साथ ही साथ आप खेलों के प्रति भी आपका रुझान, जैसे कि वेट लिफ्टिंग में आपको गोल्ड मेडल भी मिला है, तो ये साथ साथ आप करते रहे, और कितना समय निकाल पाते?
0: मैम मैं जो है जब मेरे से ड्यूटी से समय मिलता था तो मैं अपनी प्रैक्टिस जारी रखता था, तो उसके बाद मेरे को मेरे बल ने मेरे को मौका दिया, मेरे को हेडक्वार्टर बुलाया और मेरे को टीम में शामिल किया। कंपटीशन करके मैं वहाँ पे आया तो मैंने अपनी SSB में अपने बल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। मैं
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक प्रश्न जो है मैं भूल रही हूँ, मुझे लगता है कि उस प्रश्न को यहाँ ज़रूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि 20 सालों का यह सफ़र यादगार रहा है और आगे भी रहेगा। आपसे वो लोग मिलते होंगे ज़रूर जो आपके साथी होंगे, और कहीं ना कहीं कहते होंगे, कुछ ये कहते होंगे कि तुमसे प्रेरणा मिली, और कुछ ये कहते होंगे कि काश हम भी तुम जैसे बन पाए, ऐसा होता है?
0: हाँ मैम, काफ़ी लोग मेरे जो मित्र हैं बल्कि काफ़ी मिलते हैं और बहुत मतलब मेरा साथ देते हैं, बोलते हैं यार आपने जीवन में कड़ी मेहनत की है और आप इस लायक थे, काश हम भी आपके साथ होते, और बोलते हैं और वो होते उस टीम का हिस्सा तो हो सकता है मेरे से भी अच्छा करते हो।
1: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा वो लोग जो सीमा में यानी कि सहस्त्र सीमा बल में आने से पहले, आपके वहाँ जुड़ने से पहले वो साथी वो भी तो आपसे प्रभावित हुए होंगे या होते होंगे, कहते होंगे, कुछ साथी ऐसे भी होंगे कि जो आज खुद सेनाओं में हैं, कुछ खुद फौज में हैं, तो वो उन दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया थी और क्या सा समय था उस वक्त जब आप तैयारी कर रहे थे, आपके साथ में बहुत से लोग और तैयारियां कर रहे होते?
0: मैम ज़्यादातर जो है हमारे गांव में से काफ़ी लोग होते हैं, लास्ट में जैसे कि मैं बताना चाहूँगा सभी भर्ती हो लेते, लास्ट में मैं हुआ था, तो जितने भी तैयारी करते थे ज़्यादातर लोग सेना में भर्ती हो गए, और कुछ थे जो हमारे साथी थे जो कि नहीं हो पाए, जैसे कि मेरा एक मित्र था योगेश शर्मा, वो जो है कोशिश भी किया पर भर्ती नहीं हो पाया।
1: तो उनके मन में मलाल रहा होगा कि काश हम भी तुम जैसे बन पाते, काश।
0: हाँ मैडम बिल्कुल बोलते हैं।
1: अच्छा कुछ ऐसे भी होंगे ये बोलते होंगे कि तुम्हारी वजह से हम आज वहाँ हैं, हम भी आज सेनाओं का हिस्सा हैं, हम भी अपना गर्व से सीना चौड़ा करके चलते हैं, कुछ प्रेरणा स्रोत?
0: मैं ऐसा साथ में बोलते थे कि क्यों हमारे जो साथी थे जो हमारे साथ दौड़ते भागते थे वो एक दूसरे का एहसान जरूर मानते हैं, और कुछ हमारे जो सीनियर थे जो फौज में थे वो स्टाफ वॉच लेके मैम सभी को दौड़ाते थे, तो वो यादें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनमें हमारे जो लगने में सिर्फ हमारा ही मेहनत नहीं, हमारे गांव के फौजियों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने भी हम पे काफ़ी मेहनत करवाया, स्टाफ वॉच लेके खड़े होना, फौज में क्या होता है, भर्ती की तैयारी कैसे की जाती है, ये सब कुछ बहुत मतलब
1: सुखद रहा है। मतलब जी। अच्छा मैंने तो ये भी सुना है कि आप भी तैयारियां करवाते थे।
0: जी मैम, मैं जो शुरू से ही जो कुश्ती में और गेम में था, तो जो मेरे कोच थे नेपाल पहलवान, तो उनसे मैं कोचिंग लेता था, तो उसी प्रकार की मैं जो एक्सरसाइज वगैरह अखाड़े में इसमें करवाता था, तो उस प्रकार से मैं दौड़ भाग बताता था, इस प्रकार से करना है, डंडे ऐसे मारनी है, बैंड ऐसे करना है, सेटअप ऐसे लगाने, तो उस प्रकार की मैं जो है उनको ट्रेनिंग देता था मैम।
1: वाह, तो जो आप ट्रेनिंग देते थे उसके उपरांत जब उनके नतीजे आते थे निकल कर जी, तो कैसा महसूस होता था, और कितने दोस्तों को आपने ट्रेनिंग दी, और आपकी नियुक्ति कब हुई?
0: मेरी नियुक्ति 2005 में हुई।
1: जी ये तो आपने मुझे बताया, तो क्या उन दोस्तों से पहले नियुक्ति हो गई थी, उनके बाद हुई?
0: उनके बाद में हुई मैम मेरी। अच्छा। सबसे बाद में मेरी नियुक्ति हुई थी मैम, और जो है मैंने काफ़ी और ज़्यादा लगन से मेहनत करी, मेरे साथ के सभी लग गए जिनको मैं
1: सिखाता था
0: वो लग गए, तो मेरे को और भी ज्यादा लगन हुई, मैंने और ज्यादा कड़ी मेहनत करी और फिर जो है अपनी एस एस

0: बल में
1: तो आपने अपने साथ साथ सबकी नैया पार लगाई, यानी कि मास्टर जी
0: नहीं मैं नैया तो नहीं खैर ये बोल सकता, जो हमारे उनका मेहनत थी उनका फल था मिला।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत का फल जरूर व्यक्ति को मिलता है अगर उसमें ये भावना हो कि उसे प्राप्त करना है। और कहते हैं कि फौज तो वैसे भी आपको लक्ष्य को प्राप्त करना सिखाता है, अपने आप से लड़ना सिखाता है। और कहते हैं जब अपने आप से लड़ जाते हैं तो आप विजयी तो वहीं हो जाते हैं, और जब देश प्रेम की भावना हो तो बात ही कुछ और होती है। तो आज हमारे साथ भागेंद्र जी हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद, जो हेड कॉन्स्टेबल हैं सशस्त्र सीमा बल में। इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, भले ही इस बात का श्रेय ना लें, लेकिन हमारे लिए तो हम यही कहेंगे कि हर एक सैनिक हर एक ऑफिसर जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से देश प्रेम मन में लिए हमारे लिए दिन रात का चैन खोकर अपने प्राणों का भी ध्यान रखते हुए अगर हमारे लिए मुस्तैद है तो हम यही कहेंगे कि आप जैसा कोई भी नहीं। तो इन मिट्टी के रखवालों को हमारी ओर से सलाम सलाम और सलाम। और जैसे कि मैंने कहा था कि भागेंद्र जी का तो जुड़ाव मिट्टी से बहुत गहरा है, क्योंकि पिताजी ने मिट्टी में से फूल उगना सिखाया है और इन्होंने उसी मिट्टी को तिलक बनाया है।
0: जी मैम,

0: कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हवलदार भागिंदर सिंह जी सहस्त्र सीमा बल से। और हमारे लिए बहुत ही सुखद पल है ये, क्योंकि आप जैसे सिपाहियों से, वीरों से जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गौरवान्वित हम महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां हर सिपाही अपने हाथ में अपने जीवन को लेकर चलता है, बिना सोचे समझे, बिना कुछ कहे, बस अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है और देश सेवा में अपने आप को समर्पित कर देश के प्रति अपने प्रेम को यहाँ दर्शाता है। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपके मन में कोई भी बात हो, आप कोई भी बात साझा करना चाहें, भागिंदर सिंह जी कोई कोई संदेश देना चाहें, तो आप 9868107070 इस नंबर पर हमें संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे पास बहुत सी बातें हैं भागिंदर सिंह जी से जानने के लिए, क्योंकि जैसा कि हम बार बार ही कह रहे हैं कि 20 सालों का यह सफर बहुत यादगार इनके लिए रहा है। बहुत सी बातें हैं, बहुत से किस्से हैं, बहुत सी कहानियां इनके जहन में जरूर होंगी जो साझा करना चाहेंगे हमारे साथ। लेकिन आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहां जानना चाहती हूं। 10 जुलाई 2020 क्या हुआ था? क्या हुआ था जिसके बाद आपके चेहरे की जो मुस्कान मुझे बता रही है कि कुछ ऐसा जरूर हुआ था जिसने आज आपको और भी गौरवान्वित महसूस करवाया, और आप उस बात का जिक्र बार बार करना चाहते हैं। क्या हुआ था 10 जुलाई 2020 को?
1: मैं बताना चाहूँगा, 10 जुलाई 2020 को मैं झारखंड में पोस्टिंग था 35 BN में। एक मैम, हमारी जो झारखंड में एक स्मॉल एक्शन टीम हुआ करती थी, उसका गठन जो है संजय सर ने किया था, IPS संजय सर ने, और हमारे बल ने SSB ने उसको बहुत सहारा था। हमारे जो बल की जो सबसे बड़ी नीम है हमारे डीजी साहब ने जो है अपनी SSB को जो है कई बार मौका दिया है ऑपरेशन करने का। और उसका तो ये ऐसा था मैम, जो झारखंड में जब हम गए थे तो झारखंड में माओवादी बहुत चरम सीमा पर थे, जो कि दुमका, पाकुड़, देवघर, ये जो चार पांच जो ज़िले थे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आम पब्लिक बहुत परेशान थी, लेवी वसूलना, आम पब्लिक को परेशान करना, फौज पर अटैक करना, ये काफ़ी जो है गतिविधियां होती थी वहाँ। तो ये 32 बटालियन थी जिसके जो है सर थे दीपक सर, वो भी थे उस ऑपरेशन में। संजय सर थे IPS IG संजय सर, और DIG सुमित जोशी सर थे, मनोरंजन पांडे कमांडेंट सर थे, और दीपक सर कमांडेंट, और ललित साहब DC डिप्टी कमांडेंट, नरपत सर डिप्टी कमांडेंट, ये काफ़ी जो है हमारी टीम के हिस्से थे, जो कि उनके द्वारा जो है ये ऑपरेशन किया गया। और इस टीम में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो टीम का गठन किया था वो संजय सर ने किया था, क्या कोई एक ऐसी टीम हो जिसे मैम इनका जो है नक्सलियों का सफाया करा जाए। तो उस टीम का नाम रखा गया सेट टीम, स्मॉल एक्शन टीम। तो स्मॉल एक्शन टीम जब उसका नाम रखा गया तो उसकी ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड जो है करवाई गई, हर एक प्रकार के उसमें जो है ट्रेनिंग में जो कि अच्छे बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, वो सब कुछ करा मैं
0: जी। अच्छा, फिर ये बताइए कि जब आपका सिलेक्शन हुआ, चयनित हुए, क्योंकि आपकी टीम में मतलब आपकी जो बटालियन थी उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन आपका एक मेंबर के रूप में चयनित होना कितना गौरवशाली था, उस वक्त कैसा महसूस हुआ कि मेरा चयन हुआ है, मैं टीम का मेंबर हूँ, कैसा लगा आपको?
1: जी मैम, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा और खुशी भी होगी मैम कि इसके बारे में मैं बताऊँ। तो IG जो

0: आईपीएस आईजी संजय सर थे वो, और अपने जो है डीआईजी सुमित जोशी, मनोरंजन कमांडेंट सर, ये अपना ललित सर, टू आईसी नरपत सर, डीसी, ये सभी आते थे और उनकी सभी लोगों की ट्रेनिंग होती थी वहाँ। उनका टेस्ट लिया जाता था, उसके बाद उनका सिलेक्शन किया जाता था। तो मेरा जब सिलेक्शन किया था टीम में हमारे सर ने, सुमित जोशी सर ने, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि ये जो है इंस्ट्रक्टर भी अच्छा है और जो है लीडर भी अच्छा बनेगा, तो इसको जो है एज ए इंस्ट्रक्टर और टीम का सीएचएम बना दिया जाए।
1: वाह।
0: दो नंबर टीम का मैम एक प्रदीप कुमार था जो मेरा मित्र था, वो दो नंबर टीम का मैं सीएचएम था, एक नंबर टीम का सीएचएम वो था।
1: वाह, बहुत खुशी हुई होगी। किस किस के साथ साझा किया कि मैं मेंबर हूँ? किसी के साथ साझा किया था उस पर?
0: नहीं मैम, ये साझा तो
1: नहीं
0: ऐसी
1: किया
0: चीजें
1: जाता
0: नहीं
1: उस पर,
0: किया
1: तो
0: जाता,
1: ऑपरेशंस के दौरान नहीं किया
0: मगर जो
1: जाता।
0: है टीम जो है एक ही माइंड के, एक माइंड सेट के, सभी की सोच एक सी हो, ऐसी टीम मिलना बड़ा मुश्किल
1: मुश्किल
0: है।
1: होता है।
0: जो कि हमारे बल ने ऐसी टीम को ढूंढा और सबको एकत्रित किया और टीम का हिस्सा बनाया। उसमें ऐसा मैम कभी हमें फील नहीं हुआ कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं हमारे प्रति कुछ ऐसा हो। एक जगह रहना, एक जगह खाना, कभी ऐसा नहीं भाई की तरह रखना, बिल्कुल कोई भी वो नहीं। जो ट्रेनिंग एक जवान करता है वही एक ऑफिसर करता है, बराबर। जितना वर्क वो करता है उतना ही वर्क, कोई ट्रेनिंग में कोई कैसी भी जो भाईबंदी नहीं होती मैम।
1: बिल्कुल, एक टीम की तरह काम
0: तो
1: करते हैं।
0: जी, जिसमें कि मैम जो है आईजी जो संजय सर और डीआईजी सुमित जोशी सर ये रहते थे, तो उसमें कोई भाईबंदी की कोई गुंजाइश नहीं। वो कोई भी हो अपना सात सात दिन की मैम हमारी जो है वहाँ पे जंगल ट्रेनिंग भी होती है, तो उसमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी चीजें मैं बता भी नहीं पाऊंगा कि
1: जी
0: अंदरूनी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अंदरूनी बातें हैं। और जब हम कहते हैं, जब आपकी फोर्स की बात होती है, तो बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिनको हम उनके सिर्फ हम उनका सिर्फ निर्णय हमारे सामने आता है कि विजयी रहे हैं और विजयी प्राप्ति हुई है, लेकिन ऑपरेशंस की बात यहाँ नहीं कर सकते। निश्चित रूप से हम भी यही चाहेंगे कि आप अपनी फोर्सेस की या अपने बल की गरिमा को बनाए रखें। अब बात आती है कि 2024 में राष्ट्रपति द्वारा आपको पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया इस एंटी मायोविस्ट ऑपरेशन के लिए। उस वक्त तो लगा होगा कि जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि सम्मान प्राप्त करना गौरव की बात तो होती है, लेकिन ये लगता है कि जब मुझ मेरा चयन किया गया, हम हमारी पूरी टीम विजय हुई है, सम्मान मिल रहा है, लेकिन जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। उस वक्त क्या सोचा आपने?
0: मैम देखो, बहुत मेरे को खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई और एक जिम्मेवारी भी बढ़ गई। जैसे ऐसा होता है ना मैम, जैसे कि आम का पेड़ होता है, जब आम आते हैं ना तो वो झुक जाता है, तो उसी प्रकार से मेरे को जितने भी मेडल लगे, जितनी डीजीडीस मिली हैं, उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। जब मैं डिसिप्लिन में रहूँगा तो हमारे जवान भी डिसिप्लिन में रहेंगे, तो जिम्मेवारी तो कहीं ना कहीं बढ़ती है मैम।
1: बिल्कुल, सम्मान हर्ष देते हैं, सुखद अनुभूति कराते हैं, गौरव महसूस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब इन कंधों को और चौड़ा करके चलना है, और जैसा कि आपने कहा कि डिसिप्लिन में रहना है और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। आपने एक बात और कही कि बहुत सारे सम्मान और आपको प्राप्त हुए हैं, तो ये भी बताएं हमें, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, जिस वक्त आपको सुन रहे होंगे, आतुर हो रहे होंगे जानने के लिए, वो और कौन से सम्मान हैं जिनसे नवाजा गया आपको?
0: जी मैम, मेरे को पुलिस मेडल मिला है मैम, और आंतरिक सुरक्षा मेडल मिला है, डीजी साहब की तरफ से मेरे को सिल्वर डीजी डिश मिली है, गोल्डन डीजी डिश 1 स्टार, गोल्डन डीजी डिश 2 स्टार, और प्रशंसा पत्र हमारे डीजी साहब ने, आईजी साहब ने, डीआईजी साहब ने, कमांडेंट सर ने, काफ़ी मात्रा में मेरे को जो है प्रशंसा पत्र भी मिले, काफ़ी जो है मेरे को नगद इनाम भी दिया गया मैम।
1: वाह क्या बात है। और आपकी जो पदक हैं इस वक्त आपने धारण किए हुए हैं ठीक अपने वक्ष पर, तो वो जिस तरह से चमक रहे ना उनकी दीप्ति, उनकी चमक आपके चेहरे पर भी नजर आ रही है। और ये सच्चे देश प्रेम की गाथा है, शायद आप अपनी आंखों से ना देख पाए लेकिन मेरे शब्दों के माध्यम से आप उस चमक को, उस दीप्ति को महसूस कर सकते हैं जब किसी सिपाही को, किसी सोल्जर को सम्मान दिया जाता है। और यकीन मानिए ये सम्मान यूं ही अर्जित नहीं किया जाता, इसके लिए कर्तव्य निष्ठा चाहिए, देश प्रेम चाहिए और बहुत सारी मेहनत चाहिए। और वो मेहनत और वो देश प्रेम आपके चेहरे पर आपके पदकों के साथ एक साथ खिल रही है। हम बहुत गौरवशाली महसूस कर रहे हैं कि आप जैसे व्यक्ति के साथ, आप जैसे सिपाही के साथ जो सहस्त्र सीमा बल में रहकर अपना योगदान दे रहा है, काबिले तारीफ है। तो एक नगमा हमारी ओर से आपके लिए, क्योंकि आप जैसे जो सिपाही हैं जो ये सोचते हैं कि हमें बस चलते रहना है, रुकना तो कभी सीखा ही नहीं
0: जी,
1: है
0: ना,
1: तो उनके नाम हमारी ओर से ये नगमा बहुत ही प्यारा है, कर्मा फिल्म का। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी बेहद पसंद आने वाला है।
0: जी जी

0: पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर। और आज का अंक हर बार की तरह बहुत ज्यादा खास है क्योंकि हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह, सहस्त्र सीमा बल जिन्हें पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया और इसके अलावा कई पुरस्कारों से ये अलंकृत हैं। और हम यही कहेंगे कि आप जैसे सिपाहियों से जब हम रूबरू होते हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये बात जरूर उठती है कि काश हम भी आप जैसे बन पाते, काश हम भी इस प्रकार देश की सेवा कर पाते। पर कहते हैं कि हर व्यक्ति को ईश्वर ने चुना है अपने अपने कार्यों को, कहते हैं ईमानदारी के साथ करने के लिए। तो जिस कार्य के लिए आपको चुना उसको आप बखूबी बहुत प्यार से सम्मान से निभा रहे हैं। एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा कार्य था, कौन सी ऐसी बटालियन थी, कौन सा ऐसा रोल था आपका जो आपको लगा कि अगर ये ना मिलता तो शायद कुछ अधूरा रह जाता, कोई कोई ऐसा है?
1: मेरा ये 35 से जो बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, जो कि वहाँ के जो कार्य थे काफ़ी जो है मेरी यादों में घुले मिले हैं।
0: जी जी, तो जब दूसरों से बात करते होंगे, बताते होंगे तो जरूर जिक्र करते होंगे, है ना?
1: जिक्र करते हैं मैम।
0: अच्छा, एक बात बताइए मुझे, इन 20 सालों में बहुत सारे मिशन रहे होंगे जिसके आप हिस्सा रहे होंगे, उसके साथ साथ ट्रेनिंग्स भी आपके जो कहते हैं आपकी सर्विसेज में शामिल रही होंगी, तो किस किस तरह से आपको प्रशिक्षित किया गया लगातार जिससे कि आपको स्वावलंबी बनाया जा सके, जिससे कि आप सहस्त्र सीमा बल के लिए वो कहते हैं ना कि मजबूत, एक मजबूत सिपाही बन सकें, तो कौन कौन सी ऐसी ट्रेनिंग्स जो आपको प्राप्त हुई?
1: जी मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैंने SSB में कमांडो कोर्स किया, उसके बाद जो है NSG ब्लैकेट कमांडो कोर्स में गया, वहाँ पे एक कैप्सूल कोर्स चलता है NSG के अंदर, वो भी किया है। वहाँ पे मैंने PTI कोर्स भी किया और जो है PTI इंस्ट्रक्टर था NSG में, और VIP ड्यूटियाँ करी हैं।
0: वाह क्या बात है, तो निश्चित रूप से आपको बार बार ये महसूस होता होगा ना कि कुछ और नया अर्जित कर लिया, कुछ और नया सीख लिया, कुछ और नया दे दिया, ये नयापन हमेशा रहता होगा।
1: हाँ जी मैम, फौज में हर एक चीज जो नई होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और ना ही जब तक उम्र है, आदमी खालीपन ही रहता है, बस सीखे जाओ सीखे जाओ।
0: वाह क्या बात है। अच्छा एक बात और बताइए कि सहस्त्र सीमा बल में आप अपना योगदान दे रहे हैं और 20 सालों का सफ़र यादगार भी रहा, आगे आने वाले कहते हैं जीवन के लिए भी आपने बहुत कुछ सोचा हुआ होगा, निश्चित रूप से आप ये चाहते होंगे आप और सम्मान अर्जित करें और बड़े बड़े ऑपरेशंस का हिस्सा बने, लेकिन इनके साथ साथ कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन में उसका

0: परिवार, उसका पारिवारिक जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में अपने परिवार, सबसे पहले कि सहस्त्र सीमा बल के प्रति जो आपका का कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य है, वो तो सर्वोपरि है, लेकिन उसके साथ साथ परिवार, इन दोनों के बीच कैसे भूमिका निभाकर चलते हैं और आपकी अर्धांगिनी का क्या योगदान है? क्योंकि कहते हैं कि हमारे जो स्पाउस होता है, जो हमारी अर्धांगिनी होती है या जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में शामिल है, अगर वो ना हो तो शायद हमारे लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो किस तरह से सामंजस्य बैठा पाते हैं आप?
1: मैम, ऐसा है कि जो परिवार और देश, कहीं ना कहीं दोनों ही सम्मान लायक हैं, पर मेरे लिए सर्वोपरि पहले मेरा देश है, उसके बाद परिवार है। मैं जब ड्यूटी करता हूँ तो बड़ी निष्ठा से, बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटियाँ निभाता हूँ, और जब मैं लीव पर रहता हूँ तो पूरा समय अपने परिवार को देता हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे जब परिवार खुशहाल है तो मेरे को भी दिल करता है अच्छे जो देश की सेवा करूँ, देश के प्रति समर्पित रहूँ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। अब आप हमें ये बताइए कि परिवार में कौन कौन है? वैसे तो आप अपने आपने बताया अपने भाई बहनों के बारे में, तो ये बताइए कि जब प्रथम बार अपनी अर्धांगिनी से मिले आप, तो उनसे क्या कहा आपने? क्योंकि आप फौज में और कहीं ना कहीं अर्धांगिनी को बात समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि देखो देश पहले है, ऐसे में हो सकता है कि मैं तुमसे बहुत दिनों तक बहुत दूर रहूं। कुछ ऐसा उनके साथ साझा किया, कुछ कोई कहते हैं ना कि उनसे कोई प्रॉमिस लिया?
1: मेरे को मैम समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा पूरा परिवार ही जो है डिफेंस में है, उनके परिवार के भी काफ़ी डिफेंस में है, उनको पहले से पता था। पर फिर भी जो है एक रहती है, तो मैंने शादी से पहले पूछा था कि मैं फौज में हूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उन्होंने पहले जो है बोल दिया मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जो मदर फादर कर देंगे वो मेरे लिए सब ठीक है।
0: अच्छा, ये बताइए कि आप आपके लिए कोई प्रेरणा स्रोत रहे और आपने किसी से प्रेरणा ली? अब बच्चों पर, जब बच्चों से आप बात करते हैं, बच्चों को किससे कहानियां सुनाते होंगे, तो आपके बच्चे आपसे क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं कि हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं?
1: जी मैम, मेरा बड़ा लड़का है जो है वो भी फौज में आने का इच्छुक है, जो कि अब 11वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो उसकी बहुत रुचि है। वो NDA की तैयारी के लिए बोलता है और करने के लिए इच्छुक है।
0: क्या बात है। और हम यही कहेंगे जिस तरह से आपने बहुत लोगों की नैया पार लगाई अपनी नैया के साथ साथ, वैसे बच्चों की नैया पार भी आप निश्चित रूप से लगाएंगे। और मैं तो ये कहती हूँ कि आपके गांव के जितने भी बच्चे हैं वो आपको देखकर, ये गांव के और भी जो हमारे फौजी हैं उनको देखकर वो ज़रूर प्रेरणा प्राप्त करें।
1: बिल्कुल मैम,
0: क्योंकि देश प्रेम से बड़ा प्रेम तो कोई और नहीं, और देश के प्रति अपना सम्मान दर्शाने के लिए शायद फौज से बेहतर कुछ भी नहीं।
1: बिल्कुल मैम, ऐसा नहीं है कि जो फौजी है, कोई भी देश का जहाँ भी जैसे भी है, जैसे FM रेनबो आप भी एक देश की सेवा कर रही हो
0: जी,
1: तो ये जो जहाँ भी जो भी है ईमानदारी से कहीं भी देश की सेवा की जा सकती है।
0: बिल्कुल, कहीं से भी देश की सेवा की जा सकती है, इस बात की मिसाल है हमारे लिसनर्स भी जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं। संदेश हमारे पास आए हैं, यश शिंदे ने मुंबई से संदेश भेजा है और इन्होंने कहा कि बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा शो हमारा चल रहा है, उसका सारा श्रेय भगिंदर जी आपको जाता है, क्योंकि जो बातें आपने साझा की वो हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत रहीं, और यही कहेंगे कि हमारे लिए एक याद बन गई क्योंकि आपसे आज मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई। हेमंत कुमार यादव ने संदेश भेजा है, लिखते हैं जय हिंद सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको यानी कि आपको धन्यवाद यहाँ पर ज्ञापित कर रहे हैं। FM रेनबो को हार्दिक बधाइयाँ यहाँ पर लिख रहे हैं, कृपया हमारी ओर से आदरणीय भागिंदर सिंह जी को सादर जय हिंद अवश्य प्रेषित करें, और 28वीं वाहिनी SSB अंतागढ़ की PIT टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं भेजी गई हैं। देखिए कितना सुखद पल है आपके लिए भी। अच्छा जी, आपके लिए संदेश आया है थाईलैंड से मिस्टर अमोल भवाने का, और इन्होंने भी आपको जय हिंद लिख यहाँ पर आपका धन्यवाद ज्ञापन किया है। संदेश हमारे पास आया है शंकर लोध का, द्वारका सेक्टर 15 ककरोला दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका भी, आपने संदेश भेजा और आप सभी दोस्तों का जिन्होंने समय निकाला। यहाँ पर एक हमारे पास संदेश आया, यहाँ पर नाम जरूर नहीं लिखा गया है, हेलो सर लिखा गया है, लेकिन जो डीपी है उसे महसूस होता है कि आप भी सेनाओं में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त संदेश भेजने के लिए। भगिंदर सिंह जी, हमारे पास समय यहाँ पर कम है, लेकिन चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन युवाओं को जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं, जो सेवाएं देना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि वो देश के प्रति अपने सम्मान को सेनाओं में, सेनाओं से जुड़कर ज्ञापित करें, क्या कहना चाहते हैं आप उन सभी के लिए?
1: अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं देश सेवा केवल एक नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है
0: जी।
1: और मैं यही कहना चाहूँगा, सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। नौकरी ही नहीं, कहीं भी देश के किसी भी कोने में जो देश की सेवा करी जाती है ईमानदारी से, निष्ठा से, कहीं भी देश की सेवा कर सकते हैं
0: जी। एक और संदेश हमारे पास आया है सीटी दीपक निगम का, दिल्ली 25th बटालियन से हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भेज रहे हैं आपको दीपक निगम। तो हम यही चाहेंगे कि आप यूं ही अपना प्यार इस कार्यक्रम के प्रति दर्शाते रहें। और आज मैं बहुत उत्साहित हूं, प्रसन्न हूं संदेश टू सोल्जर्स के इस अंक के माध्यम से। हेड कॉन्स्टेबल भागिंदर सिंह जी, सशस्त्र सीमा बल, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जिन्हें पुलिस मेडल फॉर गारंट्री से सम्मानित किया गया, तो हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि आज आपके माध्यम से हमने इतनी सारी बातें आपके माध्यम से सुनी, आपका यात्रा वृत्तांत सुना। और मैं कहती हूँ कि आगे की ये जो यात्रा है और भी ज़्यादा सुखद हो, कि जब अगली बार हम मिलें तो आपसे और भी बहुत सारी बातें हों करने की, कहने की। तो एक गाना अंत में आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी कि लता मंगेशकर का एक नगमा यहाँ आपके लिए प्ले किया जाए, तो हम आप सभी वीरों के लिए, सभी फौजियों के लिए, क्योंकि हमारे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स हम ये कहेंगे कि उन सभी के लिए है, उन सभी फौजियों के लिए है जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं या सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में राज कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो आप सभी के लिए ये नगमा, और ख़ास तौर पर ये नगमा भागिंदर जी के लिए हमारी ओर से। तो हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं भागिंदर सिंह जी को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद FM रेनबो के स्टूडियोज में आने के लिए।
1: थैंक यू मैम।
0: और हम यही चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करें और इस कार्यक्रम को नित्य प्रति सुनते रहें, क्योंकि आप हमारे देश के सैनिकों की हौसला अफजाई इसी कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत सारे संदेश आने शुरू हो चुके हैं, मैं माफ़ी चाहूँगी, समय यहाँ पर गुजर रहा है। जीडी राजेंद्र सिंह जी 25th बटालियन, इन्होंने संदेश भेजा है, हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जोया का मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से संदेश आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, देखिए ये आपके प्रति प्यार है जो देश से नहीं विदेश से भी बहुत संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शायद मुझे कोई इस शो को एंड करने नहीं देगा, क्योंकि संदेश इतने सारे आ रहे हैं। और हमारे पास संदेश है HC/GD बलविंदर सिंह जी का दिल्ली से, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का संदेश भेजने के लिए और हौसला अफजाई करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी भगिंदर सिंह जी।
1: थैंक यू मैम।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: Yes, Musically Yours 107.1 FM Rainbow पर 5:02 का वक्त हो गया है और मैं हूँ आप लोगों के साथ मिशिल्पा. लव यू जिंदगी की शुरुआत इस गाने के साथ हो रही है. अलीशा जी जुबिन गर्ग आ रहे हैं और बस थोड़ी देर में एक म्यूजिकल गेम आप लोगों के लिए आ रहा है. तो आपको कुछ नहीं करना है, गाने इंजॉय करना है और हमारे साथ बने रहना है.

107.1 FM रेनबो पर लव यू जिंदगी पर बने हुए हैं आप सभी. और बैक टू बैक सॉन्ग्स तो जो है वो बहुत बार सुनते हैं, दो तो डेफिनेटली होते हैं, लेकिन तीन भी कभी कभी इत्तेफाकन जो है वो सुनने मिल जाते हैं. लेकिन बैक टू बैक मीटिंग्स जो है वो बड़ी रेयर होती है, और हमारी मीटिंग वैसे ही हो गई है. इनफैक्ट तीनों शो में आई, और मॉर्निंग का 8 बजे वाला, फिर दोपहर का 11 बजे वाला, और आज जो है वो शाम वाला. यस, और आज जो है वो एक बड़ा सुंदर सा म्यूजिकल गेम जो है वो हम खेलने वाले हैं. दोनों को मिक्स करके आपको सुनाया जाएगा और आपको जो है वो गेस करना है. तो एक काम करते हैं, पहले जो है वो धुनें सुन लेते हैं.

बताइए कौन से दो गाने जो हैं वो मिले हुए हैं 8 6 5 6 6 1 0 7 1 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, फटाफट से मैसेज करें। मीनवाइल जो है आप लोगों के लिए बढ़िया सा गाना जो है यहाँ पर आ रहा है और गुड इवनिंग विश करते हुए बहुत सारे लोगों के इनफैक्ट मैसेजेस आ चुके हैं। प्रमोद जी, विजेंद्र जी, पंकज मोहर जी, प्रणव शिंदे, अंजू जी, हेलो हेलो हेलो, रजनीकांत जी, नितिन जी, सारिका जी, थैंक यू सो मच। और जवाब के अलावा भी अगर कुछ कहना है तो 8 6 5 6 6 1 0 7 1 इस पर मैसेज कर सकते हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 1455 वर कॉल करा.
1: म्यूजिकली ऑर्स 107.1 FM रेनबो पर 5:16 का वक्त हो गया है. लव यू जिंदगी पर बने हुए हैं आप सभी. और देखो, जब भी कभी हम नया गेम जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो इनिशियली बहुत हार्ड लगता है, उसके बाद आप ऐसे एक्सपर्ट हो जाते हैं, सब PhD ऐसा लगता है कर लिए एक महीने में, लिटरली ऐसा मुझे फील होने लगता है. और देखिए, ये थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन जब आप ऐसा गौर से सुनेंगे ना तो आपको, सबसे पहली चीज़ तो दोनों गाने बहुत हिट हैं. इनफैक्ट जितनी भी क्लिप्स मैं प्ले करूँगी, वो सारे के सारे जो दो गाने मर्ज किए गए हैं वो दोनों ही बहुत हिट हैं, रहेंगे आगे भी. तो वो एक सॉर्टेड है. और धुने जो है वो, जैसे ऐसा कान लगा के जब आप सुने ना तो ऐसे फट से जो है वो समझ जाती हैं. तो कोशिश करिए, ये दोनों गाने आपने बहुत बार सुने हैं, बहुत मतलब बहुत, ठीक है. तो एक बार ये मैं डबल इसलिए जो है अभी प्ले कर रही हूँ, फिर हम स्लोली स्लोली एक ही बार जो है वो सुनाया करेंगे. लेकिन अभी चूँकि सबको लोग लग रहे हैं अरे ये तो बहुत कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है. आप लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एकदम म्यूज़िक लवर्स हैं और आपने बहुत सारा म्यूज़िक जो है वो सुना है. तो चलिए, मैं दोनों गाने जो है वो वापस से प्ले कर रही हूँ. सुने और पहचाने कि कौन से दो गानों की धुनें जो है वो मिक्स की गई हैं.

बताइए कौन से दो गाने हैं। 8 6 5 8 6 6 1 0 7 1 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। दो लोगों ने वैसे कैच कर लिया है तो आप भी कर लेंगे, कोशिश करिए। फिलहाल जो है एक और सुंदर सा गाना आप लोगों के लिए यहाँ प्ले होता है और आपको कुछ नहीं करना है, गैस करेंगे बढ़िया नहीं करेंगे तो मैं बता दूंगी, और वो गाने जो है वो हम पूरे सुनेंगे भी यहाँ, तो बने रहिए म्यूजिकली यस पर।

ऑलराइट 107.1 एफएम रेनबो पर 5:23 का वक्त जो है वो हो गया है. लव यू जिंदगी पर आप सभी बने हुए हैं और लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन जो है वो हो रहा है, लेकिन मैं दोनों को प्ले करके गाना जो है वो वैसे करूँ आपको वैसे जो है वो समझ आएगा. एक्चुअली आ जाता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है वो. आई थिंक पहली बार जो है वो आप खेल रहे हैं, इसके लिए जो है वो थोड़ा सा ऐसा मुश्किल जो है वो हो रहा होगा. एक बार फिर से सुनिए और कोशिश करिए कि ये आ रहा है क्या. ये देखिए अब एक सॉन्ग जो है वो मैंने हटा दिया है यहाँ से और सोनू निगम साहब की आवाज़ में तुम्हे फिल्म का एक गाना है और दूसरा गाना जो है वो बेखुदी है. प्ले होगा अभी थोड़े से देर में. और राकेश माथुर जी ने, नितिन उपाध्याय जी ने और सारिका जी ने जो है वो राइट आंसर दिया है. तो चलिए आप सबके लिए फिलहाल ये गाना प्ले हो चुका है, सुने और फिर लौट कर आए यहीं एफएम रेनबो म्यूजिकली योर्स.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800-11780 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं।

0: या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ऍप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: म्यूजिकली और 107.1 FM रेनबो पर 5:30 का वक्त हो गया है. लव यू जिंदगी पर बने हुए हैं आप सभी और यहाँ पर एक म्यूजिकल गेम चल रहा है. दो गानों को मिक्स करके जो है वो सुना रही हूँ मैं, और आपको उन दोनों गानों को जो है वो पहचानना है. पिछला वाला जो मिक्सर था वो तो बहुत कम लोग जो है वो गेस कर पाए, लेकिन कोशिश करेंगे. धीरे धीरे तो आ जाएगी. सारे हिट सॉन्ग्स जो है वो मिक्स किए हुए हैं, तो ऐसा बस कान लगा के जो है वो थोड़ा आपको सुनना पड़ेगा. इनफैक्ट अगर आप हेडफोन यूज़ करते हैं तब तो बहुत आसान जो है वो होता है. यस, तो ट्राई करिए. चलिए यहाँ पर जो है वो दोनों गानों का एक वर्जन जो है वो आ रहा है.

देखिए, दो गाने की मैंने ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा प्ले की इस बार, तो आई होप जो है वो समझ आया होगा। 8 5 7 6 1 0 7 1 कई सारे लोगों के सजेशन है कि मैडम एक गाने की धुन जो है वो प्ले करिए, मतलब वो तो ऐसा है 10 सेकेंड मैं प्ले करूँगी और गाना जो है वो पहचान लिया जाएगा। वो तो डिफ़िकल्ट कैसे भी नहीं होगा क्योंकि इतने सारे गानों की बीट्स इतनी अच्छी जो है है, तो मुझे नहीं लगता कि एक गाने को पहचानना जो है वो थोड़ा भी डिफ़िकल्ट होगा, या फिर वो वैसे गाने होंगे जो बहुत ही रेयर हमने सुने होंगे। अदरवाइज़ तो म्यूज़िक का कमाल ही है ये कि वो ऐसे 10 सेकंड में जो है वो गेस कर लेते, तो वो डिफ़िकल्ट कैसे होगा बताओ। आप लोग सारे इतने एक्सपर्ट हो, पिछले जितने गेम्स मैंने खिलाए हैं उसमें ऐसे एक्सपर्टीज हो चुकी है सब लोगों की, तो ये भी जो है वो हो जाएगा। तो बताइए कौन सा गाना है, दो गाने जो है वो कौन से हैं फिलहाल जिस गाने को आप लोग कम लोग इनफैक्ट पहचान पाए थे। एक तो मैंने प्ले कर दिया तुम बिन फिल्म का, और दूसरा दर्शन रावल और अदिति सिंह शर्मा की आवाज़ में ये वाला था।

राइट 107.1 एफएम रेनबो पर 5:38 का वक्त हो गया है और यहाँ पर लव यू जिंदगी चल रहा है शिल्पा के साथ आप बने हुए हैं। एक नया गेम इंट्रोड्यूस हुआ है जो बहुत सारे लोगों के सर कैसे जूप करके ऊपर से जा रहा है, पर कोई बात नहीं, हर बार ऐसा ही होता है। आप लोगों को पहले एक दो हफ्ते जो है वो ऐसा लगता है हाय ये कैसे होगा कैसे होगा, उसके बाद तो यहाँ मैंने प्ले किया मतलब गाना और मुझे लगता है 30 सेकंड में से जवाब आने जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो अभी जो है वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन यस ये वाले में से अभी जो मैंने लास्ट क्लिप प्ले किया था उसमें से एक गाना जो है वो बहुत लोगों ने पहचान लिया है, तो एक और प्रयास जो है वो किया जाए। क्या बोलते हैं

0: लिए बताइए कौन से दो गानों की धुनें जो है वो मिक्स है. 8656601071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है. और अभी जो है विशाल ददलानी रेखा भारद्वाज के साथ लेकर आ रहे हैं ये.
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

सुखविंदर सिंह, शिखर अभिजानी, हिमानी कपूर सब चल रहे इस गाने को। 5:50 ऑलमोस्ट हो चुके हैं। लव यू जिंदगी पर आप सभी बने हुए हैं शिल्पा के संग, और आज का शो थोड़ा सा मुश्किल हो गया सब लोगों के लिए, सुनने में थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि धुनें जो हैं वो टकरा गई यहाँ पर। हाँ, मैं टकरा के जो उनको ऐसा मिक्सर बना के लेकर आई थी, और कहीं ना कहीं ये मतलब अपने म्यूज़िक के नॉलेज का टेस्ट भी एक होता है क्योंकि हम धुनों से जो है वो गाने पहचान लेते हैं, और जब ऐसे दो धुनें टकराती हैं तो पता चलता है कि भाई कितने डीप में जो है वो हम गए हुए हैं। तो चलिए एक बार और दोनों गाने मैं प्ले करती हूँ। इनफैक्ट अंकित ने, प्रवीण जी ने और अजय जी ने एक एक गाना जो है वो पहचान लिया है, नितिन जी ने दोनों गाने जो है वो पहचाने हैं, और अब मैं दोनों धुने मतलब एक धुन प्ले करूंगी जिसमें दो गाने हैं, और फिर आप देखिए कि ये आई थिंक एक जो छोटी सी रिहर्सल होगी यहाँ पर उससे आपको आसानी होगी अगले समय गाने पहचानने में। देखिए अभी दोनों धुने मिक्स की हुई है, अभी रुकिए, ये देखिए ये एक धुन है, पहचान में आ जाएगा। और उसी के साथ ये भी दूसरी वाली है, अब बताइए इतना मुश्किल है क्या? चलिए अगर मुश्किल लगेगा तो कोई दूसरा गेम जो है वो खेला जाएगा। फिलहाल के लिए सोनू निगम और कविता जी की आवाज में ही गाना एंजॉय।

जेम्स की आवाज़, वो लम्हे फिल्म का ये गाना आप लोगों ने सुना। 5:58 का वक्त हो गया है। लव यू जिंदगी पर बने हुए हैं आप सभी, और चलिए बिना देरी किए उदित जी की आवाज़ में अलका जी के साथ ये गाना प्ले हो चुका है। और आज के लिए थोड़ा हैवी डोज था, लेकिन मज़ा आया। मतलब यही तो मज़ा आता ना, एकदम आसान अगर लाइफ में सब कुछ हो जाए तो फिर शायद वो बोर होने लगता है ना। तो इसलिए थोड़ी कठिनाई होनी ज़रूरी है। जैसे किन किन लोगों के मैसेजेस आए, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है। अंकित, विजेंद्र जी, पंकज मोहन जी, प्रदीप जी, रघुनाथ, प्रणव शिंदे, अजय जी, प्रवीण जी, प्रमोद जी, नितिन, सारिका जी, राकेश माथुर, सुविधा जी, मंजरी पाटिल, सुरेश, अशोक जी। चलिए

107.1 FM रेनबो पर 6:05 पर आप सुन सकेंगे समाचार हमारे नागपुर केंद्र से, और 6:15 पर फिर से मुलाकात होगी, शो होगा अंदाज़ बयां।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: Musically Yours 107.1 FM Rainbow पर 6:15 का वक्त हो गया है. अभी आप सुन रहे थे समाचार हमारे नागपुर केंद्र से और अब यहाँ पर शुरुआत होती है अंदाजे बया की. नीति मोहन की आवाज में पहला गाना आ रहा है.

फिर लौरी फिल्म का गाना सुना। 6:23 का वक्त हो गया है। अंदाज़े बयां पर आप सभी बने हुए हैं शिल्पा के संग, और अब वो खेल आएगा जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। यहाँ पर हिंदी के गाने, क्लिष्ट हिंदी में, कठिन हिंदी में जो है वो मैं बताऊंगी, आपको जो है वो पहचानना है। और पहला गाना ऐसा मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा आसान रखा है, क्योंकि पिछला जो खेल हमने खेला उसमें थोड़ा जोर, नसें जो है वो थोड़ी ऐसी चटक गई होंगी, तो इसीलिए ये वाला जो है आई गेस आसान होगा। ठीक है, तो आ रहा है कि निहारो निहारो यह संध्या अति मोहिनी है, शनह शनह कहीं कोई प्रणय कथा ना रच जाए। निहारो निहारो यह संध्या अति मोहिनी है, शनै शनै कहीं कोई प्रणय कथा ना रच जाए। प्रिय भी है, मनोहर भी है, अनुरागमय ये दृश्य है, आज धरा पर मानो असंख्य तारागण अवतरित हुए हैं। कौन सा गाना है ये? 8656601071 पहचान गए हैं तो इस नंबर पर जो है वो मैसेज करिए। एक बार और बोलने की ज़रूरत नहीं है ना, बोलू क्या? निहारो निहारो यह संध्या अति मोहिनी है, शनह शनह कहीं कोई प्रणय कथा ना रच जाए। फिर से यही लाइन जो है वो रिपीट है। प्रिय भी है, मनो

अरबीय अनुराग में ये दृश्य है, आज धरा पर मानो असंख्य तारागण अवतरित हुए हैं। इसकी एक लाइन अगर ट्रांसलेट कर ली तो पूरा गाना जो है वो समझ आ जाएगा। चलिए फिलहाल लता जी और बाबला मेहता की आवाज़ में अनंत बख्शी साहब का लिखा ये गाना प्ले हो चुका है चांदनी फिल्म का, सुने, इंजॉय करें और बने रहें म्यूजिकली योर्स पर।

90s के दौर में भी प्यार को लेके कंफ्यूजन जो है वो रहता था। लता जी और अदनान सामी की आवाज़ में गाना आप लोगों ने सुना, समीर साहब का लिखा हुआ, अदनान सामी की कॉम्पोजिशन थी। 6:37 का वक्त हो गया है, अंदाज़े बयां पर आप सभी बने हुए हैं। और किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है, पहले मैं तो नहीं, पहले गाना सुना देती हूँ यार, है ना, जिनका नहीं आया होगा उनको मज़ा आएगा सुनने को। यस, ये वाला गाना जो है वो कठिन करके आपको बताया गया था, पूरा मैं जो है वो सुनाऊंगी। पंकज मोहर जी, गजानन शिंदे जी, राकेश माथुर जी, नितिन जी, सुरभि, प्रणव शिंदे जी और प्रवीण जी, इन सारे लोगों ने सही जवाब जो है वो दिया है। तो यहाँ पर एक खेल चल रहा है, जिन्हें नहीं पता तो गानों का शुद्ध, गानों की क्लिष्ट हिंदी करके जो है वो आपको बताई जाती है और आपको जो है वो गाना पहचानना होता है। ठीक है, तो अगला गाना मैं आप लोगों को बताऊं, उससे पहले ये कह दूं कि इसमें ना बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी लाइन जो है वो रिपीट सी लगती हैं, लेकिन जब आप ट्रांसलेशन करने उसका बैठते हो या उसको क्लिष्ट करते हो तो वो लाइन्स आती हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वो गाने में है, है ना। तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसी ही है, लाइन्स रिपीट भी हैं, तो मैं रिपीट जो है वो करके बताऊँगी। ठीक है, तो प्रणय वह विपत्ति है, वह विपत्ति है, प्रणय वह विपत्ति है, वह विपत्ति है, जिसका इसने स्पर्श किया वह संतप्त हुआ, वह संतप्त हुआ, हृदय से होता है आरंभ, होता है आरंभ, हृदय से होता है आरंभ, किंतु अंततः मस्तिष्क पर छा जाता है। कौन सा गाना है ये बताएं, 8 6 5 6 6 1 0 7 1। प्रणय वह विपत्ति है, वह विपत्ति है, प्रणय वह विपत्ति है, वह विपत्ति है, जिसका इसने स्पर्श किया वह संतप्त हुआ, वह संतप्त हुआ, हृदय से होता है आरंभ, होता है आरंभ, हृदय से होता है आरंभ, किंतु अंततः मस्तिष्क पर छा जाता है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 1455 वर कॉल करा. आकाशवाणी
1: एफएम रेनबो म्यूजिकली ऑर्स 107.1 एफएम रेनबो पर 6:46 का वक्त हो गया है. अंदाजे बयां पर आप सभी बने हुए हैं और एक कठिन सवाल आप लोगों के समक्ष रखा गया है जिसको पहचानना ऐसा कठिन हो रहा है ना. तो मैं इसके लिए एक हिंट आपको दे सकती हूँ कि कई सारे ऐसे गाने होते हैं ना जिनमें इनिशियली एक अलग तरह का ये होता है, आलाप तो नहीं कह सकते पर सिंपली वर्ड्स जो है वो बोले जाते हैं. कुछ होते हैं म्यूज़िक आता है उसके बाद सिंगिंग जो है वो गाना शुरू होता है, कुछ होते हैं जो शुरुआत से ही बिल्कुल गाने जो है वो हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो बिना म्यूज़िक के मोस्टली होते हैं. तो ये वो वाला गाना है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल जो है वो हो सकता है. ठीक है, तो फिर भी कोशिश करिए कि प्रणय वह विपत्ति है, वह विपत्ति है. ये सिर्फ एक ही लाइन तो कर लीजिए तो आपको पूरा गाना ही आ जाएगा. प्रणय वह विपत्ति है, मतलब इसके 2-3 हिंदी में आप ट्रांसलेट करें आपको वैसे ही आ जाएगा. ठीक है, प्रणय वह विपत्ति है, वह विपत्ति है, प्रणय वह विपत्ति है, है ना. फिर से रिपीट जो है वो होता है, जिसका इसने स्पर्श किया वह संतप्त हुआ, वह संतप्त हुआ. हृदय से होता है आरंभ, होता है आरंभ, हृदय से होता है आरंभ, किंतु अंततः मस्तिष्क पर छा जाता है. इनफैक्ट इसकी आखिरी की लाइन भी अगर आपने ट्रांसलेट कर ली तो आपको, क्योंकि वो फेमस सॉन्ग है, बहुत बहुत बार जो है वो सुना है, बहुत पुराना नहीं है लेकिन इतना नया भी नहीं है कि आप जो है उसे पहचान नहीं पाए. चलिए अभी इस गाने के पार जो है वो मैं राइट आंसर जो है वो बता दूंगी. तो सिर्फ कितने देर का, 3 मिनट का, गिन के 3 मिनट का समय है. आस्था गिल, सचिन, जिगर मिलकर गाएंगे इस गाने को. सुने और लौट कर आए म्यूजिकली योर्स पर.

0: ऑलराइट 107.1 एफएम रेनबो पर 6:50 का वक्त हो गया है. अंदाज़े बयां पर बने हुए हैं आप सभी और एक राइट आंसर जो है वो मुझे आया है राकेश माथुर जी का. ठीक है, तो अभी जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि प्रणय को जो है वो प्रेम भी कहते हैं. प्रणय वह विपत्ति है. इसके क्या क्या ऑप्शन जो है वो हो सकते हैं ज़रा अपने मन में सोचें. बहुत सारी मतलब चार शब्द हैं इसमें, लेकिन अगर आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो दो तीन लाइंस अलग अलग तरह से जो है वो डिपेंड करता है कि आप उसकी फ्रेमिंग जो है वो कैसे कर रहे हैं. तो ये अब देखिए कि ये जो लाइन गाई है.
1: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है,
0: प्रणय वह विपत्ति है, इश्क वो बला है. मतलब ये एक्चुअली में सिंपल था, लेकिन पता नहीं इतना कंफ्यूजन जो है वो क्यों हुआ सारे लोगों को. चलिए फिलहाल सुनिए इस गाने को और लौट कर आइए यही म्यूजिक इतिहास पर.
1: इश्क वो बला है जिसको छुआ इसने वो जला है, दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है. कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है. इतना हुआ

107.1 FM रेनबो पर अंदाजे में चल रहा है. शिल्पा के साथ आप बने हुए हैं और ठीक 7 बजे आप सुन सकेंगे समाचार और 7:10 पर हमारी मुलाकात होगी हम तुम के साथ.

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स
1: 107.1 एफएम रेनबो पर अभी आप सुन रहे थे समाचार और अब यहां पर शुरुआत होती है हम तुमकी 8568 1071 की हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कोई गाना जो बहुत टाइम से नहीं सुना है ऑप्शन के साथ जो है वो भेज सकते हैं। और आज कटरीना कैफ का हैप्पी वाला बर्थडे है तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और उन्हीं की फिल्म का एक गाना यहाँ पर प्ले हो चुका है के एंड पलक मुछाल की आवाज़ में।

शैलेंद्र जी, गुलशन बाबरा और आर डी बर्मन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन था इस गाने में। 7:19 का वक्त हो गया है, हम तुम पर बने हुए हैं। आप सभी बलकरण वर्मा, अंजनी जी, ज्योति जी, प्रहलाद, बंटी, बबली, इन सबको सुना था ये गाना खेल खेल में। हम तुम चल रहा है 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कोशिश करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ ऑप्शन के साथ जो है वो गाने भेजे। वैसे पहला गाना जो है वो पंकज मोहर जी की फरमाइश पर हुआ था प्ले, और अब फिरोज सिगनपुरिया जी की रिक्वेस्ट आ रही है, और बारिश जहाँ पर नहीं हो रही है इस गाने से थोड़ा सा जो है वो फील तो हो ही जाएगा। लता जी और किशोर कुमार साहब की आवाज़ में अजनबी फिल्म का गाना सुने और इन्जॉय करें, और बने रहें म्यूजिकली योर्स पर।

किशोर कुमार साहब की आवाज, आनंद बख्शी साहब के लिरिक्स और एच डी बर्मन साहब की कॉम्पोजिशन पर आराधना का ये गाना सुना। दिग्दर्शन जी और कविता जी की रिक्वेस्ट पर 7:28 का वक्त हो गया है। हम तुम पर बने हुए हैं आप सभी, और दो गाने अगर गोल्डन एरा के आ जाएं तो रिक्वेस्ट ऐसे खट से चेंज रहती है और नए गाने जो है वो आ जाते हैं। ये कमाल है उस एरा के गानों का। वैसे बहुत सारे लोगों की फरमाइश आ चुकी है, अब इसके बाद जो मैसेज करेगा मुझे नहीं पता कि शामिल हो पाएगा या नहीं गाना, पर भी एक बार भेज दीजिए अगर मन कर रहा है 8657661071 पर। और अगला जो मैं गाना प्ले कर रही हूँ, प्लीज़ एक बार अपना नाम मुझे मैसेज करिए, क्योंकि आपका मैसेज जो भेजा था आपने बहुत पीछे चला गया है और मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन गाना चूँकि मैंने क्यों करके रखा है तो वो मैं डेफिनेटली प्ले कर रही हूँ। और 7:30 या 7:30 को फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप 2026 की अपडेट जो है वो रेडियो सेट पर आप सुन सकते हैं। यस टंटनन। और अभी जो है वो अगला गाना आ रहा है आपको, बड़ा सुंदर है, और अगर कहीं बारिश हो गई होगी इस वक्त तो इस गाने का लुत्फ दुगना बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, और अगर हाथ में चाय की प्याली है तो तिगुना हो जाएगा। सुने और बने रहे म्यूजिकली यास पर।

0: करी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत। आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे। आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा। अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा। आकाशवाणी FM
1: रेनबो म्यूजिकली यॉर्स 107.1 FM रेनबो पर 7:38 का वक्त हो गया है और बहुत सारे लोगों की फरमाइश आ चुकी है, लेकिन अब देखते हैं किन किन लोगों के गाने जो है वो आ सकते हैं। अभी सुशील यादव जी और रेणू यादव जी की रिक्वेस्ट पर हुआ था सॉन्ग प्ले, और अब जो है गाना आ रहा है वो हो रहा है प्रमोद चिचोलकर जी की रिक्वेस्ट पर। तेजा फिल्म का सुने और लौट कर आए यहीं म्यूजिकली यॉर्स पर।

शुभदा जी की रिक्वेस्ट पर हुआ ये गाना प्ले, जो जीता वही सिकंदर इस फिल्म से। 7:50 का वक्त हो गया है, हम तुम पर बने हुए हैं आप सभी, और कुछ लोगों की रिक्वेस्ट हमेशा की तरह छूट जाती है, कुछ लोग शिकायत करते हैं, और कुछ जो है प्रणव शिंदे टाइप जो हमारे लिस्नर एकदम क्यूट वाले, वो कभी भी जो है ना ही शिकायत करते हैं ना ही गुस्सा करते हैं, ये उनकी कमाल की बात है। और हमें भी हालाँकि बुरा लगता है जब इतनी मेहनत से आप मैसेज करते हैं और एक आस रहती है कि शायद इसके बाद हमारा गाना आएगा, इसके बाद हमारा गाना आएगा, लेकिन ऐसा होता है कि कभी हम किसी की रिक्वेस्ट पे करते हैं, कभी किसी की, क्योंकि संभव नहीं होता है। 1 घंटे में 8 से 9 गाने जो है वो प्ले होते हैं, और अगर 90s वाले गाने होते हैं तो बड़े बड़े हैं, 6-7 मिनट वाले गाने, तो उसमें तो और जो है वो क्वांटिटी कम हो जाती है। तो फिर भी पूरी कोशिश रहती है हर राज्य की, और इसीलिए इतने सारे स्लॉट्स भी रखे गए हैं रिक्वेस्ट के लिए, ताकि आपकी सबकी फरमाइश जो है वो समय समय पर पूरी होती रहे। यस, तो अभी मैसेजेस किन किन लोगों ने करे हैं, शुभदा जी का जैसे मैंने बता दिया, अभी सबसे एकदम हाईलाइट जो है वो हो रहा है, उन्होंने लिखा है थैंक यू शिल्पा जी, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अशोक पाटिल जी, प्रणव शिंदे जी, दत्ता केदार पंडरपुर से, ओंकार काटकर, ज्योति कुमार वैदेही, गजानन शिंदे, प्रमोद जी, राकेश माथुर, विजेंद्र जी अकोला से, दत्तात्रेय जी, पंकज मोहर, नितिन जी, मुकेश कश्यप, शंकराचार्य जी तेलंगाना से, सुशील यादव, रेणु यादव, सारिगा जी, मुकेश वालिया देहरादून से, बलकरण वर्मा, मनोहर राव शिंदे, फिरोज सिकनपुरिया, रघुनाथ जी, महाराज जी, पुरी गोस्वामी, ओके, चंद्रशेखर जी, दीपा पालकर जी, अरविंद कुलकर्णी जी, अजय साखरे जी, दिग्दर्शन जी, कविता जी, अंकित, प्रवीण जी, इब्राहिम, किशोर पेंड्रेकर, इसके अलावा इन्होंने अपना नाम जो है वो भूषण पाटिल, प्रदीप जी, मंजरी पाटिल, सुरेश जी, अंजू जी, रजनीकांत जी, और किसी का नाम जो है वो आई होप नहीं रहा है। ओके, तो शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने लगातार मैसेजेस भेजे हैं, और कंसिस्टेंसी के साथ आप सब बने रहते हैं। कुछ भी कहना हो तो 8657661071 हमारा नंबर 24 घंटे चालू रहता है, शुरू रहता है आप लोगों के लिए, तो इस पर भी आप मैसेज जो है वो कभी भी कर सकते हैं। चलिए अभी यहाँ पर इजाज़त लेनी होगी आप लोगों के लिए, एक गाना तो पक्का निश्चित तौर पर आ रहा है, देखते हैं उसके साथ जो है वो एक छोटा सा म्यूज़िक का पीस आएगा, या फिर मेरी बात ख़त्म होने तक यही गाना जो है वो आएगा आप लोगों के लिए। मेरी आपकी मुलाकात जो है थोड़ा सा लंबा होगी, मतलब इसी महीने में होगी, ऑफकोर्स 29th को, यस 29 तारीख को 11 से 2 के बीच में दोपहर में मुलाकात होगी, और टिल देन जो करना है करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और अच्छी चीज़ें कंज्यूम करें, अच्छा कंटेंट देखें, अच्छी रील्स फॉरवर्ड करें, भाई ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे भी कई सारी ऐसी रील्स आती हैं जिनका कोई सिर पैर भी नहीं होता है कभी कभी, तो ऐसे थे क्यों, मतलब पहले तो आपने खुद ने कंज्यूम करा, उसके बाद आप फॉरवर्ड करने की भी हिम्मत, मतलब तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ना एक मोटिवेशन मिलता है जो भी क्रिएटर होता है, उसे व्यूज़ ऑफकोर्स डेफिनेटली बढ़ते हैं, तो एक थोड़ा सा उत्साह आता है कि अरे मेरे तो व्यूज़ आ रहे हैं तो मैं इस तरह का कंटेंट और बनाता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी होती है कि थोड़ा ध्यान दें। चलिए लता जी और उदित नारायण सर आ रहे हैं इस गाने को लेकर, सुने और बने रहें 8 बजे इंग्लिश म्यूजिक।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं आईसीआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
5: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको

0: हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने ये पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लेटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुकेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
2: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमीयतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
3: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
1: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77

0: 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 1 डॉलर की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
1: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 2 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India achieves major milestone bringing over 1 billion citizens under social protection framework. Prime Minister Narendra Modi to flag off country's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana tomorrow. Direct commercial flight begins between Daman and New Delhi, marking new era of air connectivity. World-renowned Rath Yatra of Lord Jagannath in Odisha's Puri draws lakhs of devotees. US expands strikes into northern Iran, disables ship trying to break naval blockade, Tehran retaliates. 2 Indian men boxers clinch gold while 3 bag silver at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And in men's cricket, second ODI between India and host England underway in Cardiff. And now the news in detail. India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। NTA के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजारप्पू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कतर के फादर अमीर की स्थायी विरासत दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर

0: जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने को लिए डटे हुए थे।
1: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, The News read by Renuka.

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: लीजिए, गाने के साथ साथ इस गजल में जो एंड में आमिर की आवाज में बकायदा शायरी भी है, तो सोचने दो लाइन हम भी कहते हैं शायरी में। उम्र दराज मांग के लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए और दो इंतजार में। तो जनाब इंतजार मत कीजिए, आरजू कीजिए।

प्रोग्राम चल रहा रंगे महफिल। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, और 12 बजे तक यानी कि तारीख बदलने तक। तारीख मतलब 12 बजे बदल जाएगी ना, 17 हो जाएगी तो तारीख बदलने तक यानी कि 12 बजे तक हम और आप साथ शायरों के साथ, शायरी के साथ, गज़लों के साथ और उन आवाज़ों के साथ जिन्होंने अपने आवाज़ से कुछ अल्फाजों में जान भोंक दी, और वैसे ही कुछ आवाज़ के साथ ये गज़ल आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।

आईना देख के बोले ये संवरने वाले हैं।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

जो बात हो गई, आंखों में जो बात हो गई, एक शहरे हयात हो गई। फिराक गोरखपुर के अल्फाज।

0: कोयल सितेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा

सुपुर्द खाक कर डाला तेरी आंखों की मस्ती ने, सुपुर्द खाक कर डाला तेरी आंखों की मस्ती ने। हजारों साल जी लेते अगर आपका दीदार ना होता।

कुछ ऐसे भी लम्हे होते हैं प्यार की दुनिया में, कुछ ऐसे लम्हे भी होते हैं प्यार की दुनिया में, जहां सांसें चलती हैं लेकिन बातें रुक जाती हैं।

और वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे आपसे। छोड़े जा रहे खूबसूरत सी गजल के साथ अलका याग्निक को जगजीत साहब की आवाज है। ख्याल रखिएगा अपना।

प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे तांडाली घोकस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत अब तक 26,02,000 से अधिक जनगणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण हुआ। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

12:02 हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है जीरो आवर शो। आइए आनंद उठाते हैं और मैं हूं आपका दोस्त एसएम शरीफ।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, नाना सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिद

रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। श्री शाह सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन के बाद 8 महिलाओं और 1 नाबालिग की मौत के मामले में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल किए। भारत ने कार्डिफ में खेले जा रहे दूसरे 1 दिवसीय मुकाबले में इंग्लैंड को 234 रन का लक्ष्य रखा। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

और आइए अब समय है बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है सुहानी रात।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। FM रेनबो पर रात 9 बजे।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, माँ का खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है।

साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

रात्रि के 2 बजे हैं। प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। श्री शाह सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत अब तक 26,02,000 से अधिक जनगणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण हुआ। अमेरिका ने ईरान पर हमले और तेज किए। अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर की गोलीबारी। ईरान ने भी की जवाबी

कार्रवाई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल किए और कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रात्रि के 2:31 हुए हैं। भुलाए ना बने, आइए याद उठाते हैं इस प्रोग्राम का

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: करता रहे हप हप, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा आसमानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। श्री शाह सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत अब तक 26,02,000 से अधिक जनगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हुआ। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इनक्यूबेशन नीति को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। अमेरिका ने ईरान पर हमले और तेज किए। अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर

की गोलीबारी, ईरान ने भी की जवाबी कार्रवाई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल किए। और कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात्रि के 3:03:36 और लीजिए अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज। कार्यक्रम में आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक और मैं रहूंगी आपके साथ, आपकी साथी अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यारा सा नमस्कार।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। FM रेनबो पर रात 9 बजे।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

मिडनाइट मेलोडीज श्रोता सुन रहे थे। इसके साथ ही कार्यक्रम अभी संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 4 बजने जा रहा है। अब कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

नमस्कार, एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद उस्मानी से बातचीत की और पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा उस्मानी के निधन पर गहरा शोक जताया। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी किया। 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की। सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत की बड़ी उपलब्धि, 1 अरब से ज्यादा लोग कवरेज के दायरे में आए। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत अब तक 26 लाख से अधिक गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए गए। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति को मंजूरी दी। अगले 5 वर्षों में नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच फिर तनाव बढ़ा। अमेरिका ने ईरान के नए ठिकानों को निशाना बनाया, वहीं ईरानी ने भी जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

जी हाँ साथियों, समय हो रहा है सुबह के 4:02 और लीजिए भाई सुनते हैं कार्यक्रम सारे गामा। कार्यक्रम में मैं रहूंगी आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सारेगामा अब यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 5 बजने जा रहे हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

अष्टभुजा का